0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: मोहब्बत का न

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। आज थर्सडे 3 अगस्त के इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबाजी गिरीश शर्मा आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रसारित हो रही है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा नगरी की कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से सुदर्श कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम विश्वंभर प्रभु का भाद्रपद मास के अंधकारमय पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार स्वरूप है। भागवत जी कहते हैं, निशिते

व पुष्करः, अर्थात अर्धरात्रि के समय जबकि अज्ञानी रूप अंधकार का विनाश और ज्ञानी रूपी चंद्रमा का उदय हो रहा था, उस समय देव रूपिणी देवकी के गर्भ से सबके अंतःकरण में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम व्यापक परब्रह्म विश्वंभर प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ। इस दिन भगवान का प्रादुर्भाव होने के कारण यह उत्सव मुख्यतः उपवास जागरण और विशिष्ट रूप से श्री भगवान जी की सेवा श्रृंगार आदि का है। कल जन्माष्टमी के समय दिन में उपवास और रात्रि में जागरण एवं यथोपलब्ध उपचारों से भगवान का पूजन, भगवान का नाम संकीर्तन एवं उत्सव का यह एक प्रधान अंग माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन समस्त मंदिरों में विशिष्ट रूप से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में गली मोहल्ले में भी एवं बहुत से ऐसे गृहस्थियों के घर पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं की झांकियां सजाई जाती है एवं श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक उपवास रखते हैं एवं श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी की जो विशेष पूजा है वह रात्रि के 12 बजे शंख और घंटियों के नाद से श्री कृष्ण की स्वागत के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण मंदिरों में सब मिलकर के उच्च स्वर में आरती करते हैं एवं भगवान का गुणगान करते हैं। जन्माष्टमी को पूरा दिन व्रत रखने का विधान है, इसलिए कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प करें। जन्माष्टमी के दिन केले के खंभे, आम अथवा अशोक के पल्लव आदि से घर का द्वार सजाया जाता है। दरवाजे पर मंगल कलश एवं मूसल स्थापित करके रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा शालिग्राम जी को विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर सदुपचार पूजन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजन कर तथा वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भगवान को सुंदर सजे हुए वेदी पर स्थापित करते हैं। धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान और विभिन्न प्रकार के फूलों पुष्प फलों एवं नारियल के मिठाई आदि से तथा पंजीरी जो है भगवान के सेवा में इनको भोग लगाया जाता है।

0: दिन में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कीर्तन करें तथा भगवान का गुणगान करें, और रात्रि को 12 बजे गर्भ से जन्म लेने के प्रतीक स्वरूप भगवान का जन्म कराएं एवं जन्मोत्सव मनाएं।
1: नमस्कार नितुषा, सभी को हमारा नमस्कार। FCC में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकापन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। FCC के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही हैं, जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़े बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगवा को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। इस विस्तार से मॉरिशस के निर्यातकों, खासकर कपड़ा और पहनावा क्षेत्र को 2 साल की अतिरिक्त अनिश्चितता मिल सकती है। 31 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कोकोमोडेल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामले को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया। मॉरिशस की लेखिका आनंदा देवी का नाम फ्रीगों को 2026 की पहली सूची में चुने गए 16 लेखकों में शामिल हैं। उन्हें उनके नए उपन्यास क्रोनिक द रॉयोम पेजू के लिए चुना गया है। और विदेश में रूस ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने में मदद कर रहा है। अमेरिका के लिए ये एक नया खतरा बन सकता है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल घिरएंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और दोपहर बाद से समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:17 पर और शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
2: You're listening to RM3 Radio, Mano.

रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मा काना मा यकून का बयान उन्हें सिखाया, सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जी और पेड़ सजदा करते हैं, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेअतदाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ, और जमीन रखी मखलूक के लिए इसमें मेवे और गलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ऐ जिनो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

0: उसने आदमी को बनाया बचती मिट्टी से जैसे ठीकरी और जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उसने दो समंदर बहाए के देखने में मालूम हो मिले हुए और है उनमें रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें से मोती और मोंगा निकलता है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। और उसी की है वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لك

ऐ जिनो इंसान की ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहां निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख निरी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

0: जिन्नन,
1: तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। यह है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खौलते पानी में, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। बहुत सी दानों वालियां, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें दो चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें हर मेवा दो दो किस्म का, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।

और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। गोया वो लाल और मूंगा हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, उनमें दो चश्मे हैं छलकते हुए तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

0: उनमें औरतें हैं आदत की नेक, सूरत की अच्छी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। हूरे हैं खेमों में पर्दा नशीन, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तकिया लगाए हुए सब बिछोनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, जो अजमत और बुजुर्गी वाला।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। कुरान मजीद की तिलावत एक अजीम इबादत है जिससे

बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है। कुरान पढ़ने और सुनने से दिल को रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। कुरान का हर हर्फ पढ़ने पर नेकी मिलती है और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अजर अता फरमाता है। सामीन मोहतरम, पेश खिदमत है एक हमद

मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब को याद करता है और जो अपने रब को याद नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। इस हदीस से मालूम होता है कि ज़िक्रुल्लाह इंसान के दिल को रूहानी ज़िंदगी अता करता है। जिस घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र, तिलावत कुरान, तस्बीह और दुआ होती है, वहाँ रहने वालों के दिलों में ईमान की ताजगी पैदा होती है। उसके बरअक्स अल्लाह ताला की याद से गाफिल इंसान का दिल रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा हमें अपने घरों को सुबह शाम अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद

हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए बैठे हैं फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत उन्हें ढांप लेती है, उन पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास मौजूद फ़रिश्तों में उसका ज़िक्र फरमाता है। जब घर के अफराद या मुसलमान किसी भी जायज़ जगह पर अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए जमा होते हैं तो उस मजलिस पर ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। फ़रिश्तों की मौजूदगी अल्लाह ताला की रहमत और दिल का सुकून ज़िक्र की अजीम बरकतें हैं। इसलिए घरों में कभी कभी ख़ानदान के अफराद को जमा करके तिलावत, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और मुख्तसर अज़कार

तेरे सिखों का इशांगना ही कपन्याता सात साले भारी कार्यक्रम पूरे पूरे आनंद की हाथ तेरे सिखों या सकाली सकाली रिद्धि मनोरंजन वर चुनिंग के लिए बदल तुम्हारे सकलाना अनेक अनेक धन्यवाद तेरे सिखों कीप कनेक्टेड विद अस दहवास्ता पर्यंत

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: गोकुड़िया नी गायो बोले कुंज कुंज मन मन बोले
1: जय श्री कृष्ण
0: ब्रजभूमि नारायण बोले राज राम सी गोपी बोले
1: जय श्री कृष्ण
0: धेनु जरा सा गोप बोले बाजा ने तबला मा बोले
1: जय श्री कृष्ण।

0: कुमुदिनी सरवर्मा बोले, चंद्र सूर्य आकाशे बोले,
1: जय श्री कृष्ण।
0: कामयाना मंडल बोले, अष्ट आनंद बोले,
1: जय श्री कृष्ण।
0: रोम रोम व्याकुर्दय बोले, महामंत्र मन माहे बोले,
1: जय श्री कृष्ण।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से चलिए रम जाएं हम प्रभु भक्ति में। मन की शांति, हृदय की प्रसन्नता और मन की स्वच्छता का आभास होता है प्रभु भक्ति से। आइए भजनों के माध्यम से हम प्रभु का नाम लेते हैं। आइए भजनों को माध्यम बनाएं हम और रमे रहें स्वर्ग रूपी भक्ति में। सर्वप्रथम गणपति जी से प्रार्थना करें कि वे सबकी मनोकामना पूरी करें और सबको प्रगति का मार्ग दिखाएं।

इस भजन दीपांजलि का आरंभ हम भगवान गणपति की आराधना से प्रारंभ करते हैं। भक्त प्रार्थना करता है चरणों में बैठ करके।

हर संकट से दूर करते हैं भोलेनाथ, विष का पान करने से भी नहीं कतराए भोले शंकर, क्योंकि इसमें जग का हित छुपा होता है। हर प्राणी का कल्याण करते हैं, इसीलिए कल्याणकारी कहलाते हैं शिवजी।

राम नाम का जाप देता है पूर्णता मानव को। नहीं लेते हम राम नाम तो अधूरापन सा रहता है हमारे जीवन में, ऐसे जैसे रस में मिठास न हो, ऐसे जैसे पंछी के पास पंख न हो।

दुख हर कर भक्तों का दुख हरता कहलाते हैं बजरंगबली। अपरंपार है शक्ति उनकी, अनन्य है सेवा भाव उनका। जो पूजे पवन सुत को वो हो जाए प्रिय रामचंद्र जी के। बारंबार प्रणाम अंजनी पुत्र मारुति नंदन।

श्री कृष्ण जी की छवि है बड़ी निराली, सुंदर नयन, गले सोहे वैजंती माला, कभी चुरा के खाए माखन तो कभी रास रचाए मधुबन। भक्ति का रस पाकर प्रसन्न कर देते हैं भक्तों को हमारे माधव मदन मुरारी।

शेरों वाली माता की जय गाकर शांति की प्राप्ति करता है मैया का भक्त। दर्शन के प्यासे दो भक्त नैन आस लगाए भक्ति करते हैं। जगदम्बे मैया की छत्र छाया भक्तों के लिए अमूल्य होती है।

प्रभु भक्ति में विश्वास जो करता है उसको एहसास हो पाता है कि घट घट में हैं प्रभु जी, पर्वत की घाटी हो, नदी हो कि समंदर हो, हर जगह वास होता है प्रभु जी का। प्राकृतिक सौंदर्य को संजो कर रखना प्रभु की भक्ति और उनके सम्मान को संजो कर रखने के बराबर होता है।

भक्ति वह माध्यम है जो जोड़ कर रख दे प्रभु और भक्त को। तो भक्ति के इसी धन का महत्व समझते हुए हम यहीं पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को विराम देते हैं। पर हाँ, भक्ति की धारा मन में समाहित रहेगी, यही अभिलाषा लिए चलते हैं। हम प्रभु जी का नाम जपते रहते हैं। नमस्कार।

0: 谁人茫茫，丝丝梦幻般风雨，老醉人茫
1: 你收听的是无理求思广播电台八一九频道。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट आगवा को 2028 तक बढ़ाया जाना मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये बात उद्योग एसएमई तथा सहकारिता मंत्री आदिल अमियामिया ने कही। इस विस्तार से मॉरिशन निर्यातकों, खासकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र के निर्यातकों को 2 साल की अतिरिक्त निश्चितता मिलेगी, लेकिन पोर्ट लुइस अभी से आगवा के बाद की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। उसका लक्ष्य वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकोपन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ी बातचीत और मैसेजेस के आदान प्रदान भी शामिल हैं। जांच एफसीसी के बहुत ही गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी हैं जो उसके फ़ोन में मिले हैं। ये फ़ोन 2025 में एक अन्य मामले की जांच के दौरान जब्त किया गया था। आज से घोंबे के डाकघर में एक नई विशेष सेवा शुरू की जा रही है जो पहले से ही पोर्ट लुइस, काथोबोन और फ्लाक सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इस सेवा के तहत एक अलग काउंटर होगा जहां सीधे पैसे भेजने और विदेशी मुद्रा बदलने की सुविधा मिलेगी। और विदेशी खबरों में, इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही है। सुमात्रा और कालिमांतान में लाखों लोग आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आए हैं। इंडोनेशिया की आग से उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इसका असर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में भी देखा गया है। और राष्ट्रसंघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया मौसम की घटनाओं के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका असर एलनीनो के वैश्विक स्तर पर महसूस होने के साथ और बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ये पिछले 70 वर्षों में सबसे शक्तिशाली एलनीनो हो सकता है और कम से कम फरवरी 2027 तक जारी रह सकता है। एलनीनो दुनिया भर के मौसम के तौर तरीकों को बदल देता है। इसके कारण कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति पैदा होती है जबकि दूसरे इलाकों में तेज तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लाक में 82 साल की 82-year-old की श्रीमती लक्ष्मी पेचिया, पैदाश नाम अपाडू और जो देवमंती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:45 उनके बेटे विराज पेचिया के घर कांगारो सेंटर दे फ्लाक से उठाकर मेजिन कोंडो मास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: आई बहारों की शाम फिर किसके नाम। भाई नाम तो हम आपका ही ढूंढ रहे थे क्योंकि ये वो सफर है जहां पर आपका इंतजार है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: वेलकम जी, स्वागत है आपका सुहाना सफर हमारे इस प्रोग्राम में जहां पर मैं विनीता आपका साथ देने के लिए आई हूं और खूबसूरत गीतों के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए आई हूं। तो बस हमारा टिकटॉक भी लाइव है, अगर आप चाहें तो वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आए हैं तो थोड़ा शोर मचा के ही जाएंगे आप और हम मिलकर यहां पर कुछ गुनगुना कर जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं और भाई आप लोगों के इस इंतज़ार में खूबसूरत गीतों का ये जो सफ़र है, चलिए इसको हम आगे ले चलते हैं इस अगले गाने के साथ।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत प्यार 12:13 हुए और मैं हमेशा कहती हूँ 13 क्या होगा कालिया चलिए जो होगा अच्छा होगा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे मुगैन वो खुश भी हो गया क्या बात है और मूड भी बन गया चलिए परी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और साथ में मुमताज़ जहान का भी हेलो जी कैसे हो यहाँ पर अविनाश कहते हैं आज पोर्ट लुइस

जोर हवा का झोंका इतना जोर है तो उनको बोलिए आपको उड़ा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे विराज कृष्णा के नाम, साथ में मीनाक्षी, रोशनी, सरोज, सुनीता राम प्रसाद, ज्योति चमन, स्थला की तरफ से उनकी बेटी केविना के लिए, और मीला रामा, उत्तम, निर्मला देवी, राधा दाम सामी, साथ में आसिफ अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। मुस्ताक खान आपका भी हम वेलकम करते हैं, आपको भी हमारी ओर से सलाम। चले तो ऐसा है कि यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी टू सी यू, वो मिक्स हो गया, दिखाई नहीं रहा, कोई बात नहीं। साकुन जी आपसे भी मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े हुए इस समय, और तनवीर खालिद भी हमारे साथ हैं, तो साथ मिलकर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे, ठीक है। एक तो मैंने ढूंढ लिया, बाकी नाम ढूंढ लेना, और इसी के साथ अभी हमारा जो अगला गाना होगा इसके साथ झूमने का समय हो गया है, और जैसे कि आपको बताएं कि कल हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमारे सभी जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

मच गया शोर सारी नगरी रे जी, बिल्कुल मच ही गया शोर कि कल हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए हमारा जो अगला गाना आ रहा है, हवा के संग साथ और घटा के संग संग चलेंगे। इंदिरा जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोहम्मद ऐमान बिन तजूर अरफिन आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अमृता जी नमस्कार, कविता अनु वेलकम, और साहिल का भी हम बिल्कुल यहाँ पे वेलकम करते हैं। और साथ में गाना होगा प्रताप अभिमन्यु दस्त के नाम, और यही गाना प्रतिमा गंगा के लिए, डॉक्टर ओके जितने भी लोग जीतू हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं पोर्टलसन सब के लिए, जो केटरिंग टीम है उनके लिए गाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम सुल्ताना खानदाय, प्रतिमा गंगा और बाकी जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, जैसे कि वी हैव जेनीता फ्रॉम होशनोआ, उनके हस्बैंड संदीप, उनके बेटे शिवान के लिए, और यही गाना होगा। आयशा रोशन माधुरी, रिवारा फ्रॉम पर्थ, संजय ओमी, शारदा लखनौत, सलीमा, कविता चन्नू, लवकुश। एंड नेक्स्ट गाना जो होगा प्यार से मांग रहे हैं पति विश्वदेव के लिए, और सुविता पर्तो के नाम भी। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: एंड यस सब प्यारे प्यारे दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं विदिता के साथ प्रोग्राम सुहाना सफ़र। और सुहाना सफ़र के हमारे हम सफ़र बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि उनके पसंद के गाने ही हम लेकर आए हैं। और उनके पसंद के गानों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे इस सफ़र में कुछ और भी दोस्त शामिल हैं।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए देखते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे करके इतने सारे दोस्त आ गए हैं। एंड गाना जो होगा यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, जिनिता खुशनुआ से है, उनके हस्बैंड संदीप और उनकी बेटी शिवान के नाम मांग रही हैं। और वहीं पे हमारे साथ नेक्स्ट जो गाना है, रवीना टंडन की माँ हमें मैसेज कर रही है नहीं, उन्होंने मुझे मम्मी बोला है। अच्छा, तो पहले आप अपना असली नाम बता दीजिए क्योंकि मैं रवीना टंडन की बेटी बन सकती हूँ, मैं उसकी माँ नहीं बन सकती भाई। चलो, यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए और डेडिकेट करते हैं नारायणी के लिए गाना, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स। एंड यहाँ पे नेक्स्ट गाना रागिनी जी के लिए होगा और अनिल जी हमारे साथ हैं, चले तो उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करते हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ एंजॉय करने रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा जानकर वेदना काटरबोन से साथ दे रही हैं। और साथ में यही गाना जो होगा हम गीता जी के लिए डेडिकेट करते हैं जो स्कॉटलैंड से हमें सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं गाने। द नेक्स्ट गाना गोज टू ऑल दोज पीपल लिसनिंग टू अस इन कालबास, थैंक यू सो मच भाई, आपके स्टाफ के लिए गाना होगा सुविता जी। और वहीं पे कहते हैं आज घर पे हैं, एक अच्छा सा गाना मेरे लिए, अच्छा सा गाना, मुझे लगता है ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: अरे गाना खत्म हो गया।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: गापुची गापुची गम गम। चलो भाई यहाँ पर हम सारे गम मिटाकर गापुची गापुची कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे टिकटॉक लाइव के साथ और रेडियो मनोरंजन RM3। और यहाँ पर हमारा गाना होगा नेक्स्ट। वेल नए गाने तो हम चलाते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सबको खुश करने की। ललिता शमा शोभा अलीशा प्रेमा कायतू सुनील मित्तू हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करते हैं अनिल जी के लिए। साहिल ने कहा है प्लीज़ आप मेरे बॉस के लिए गाना चला दीजिएगा, तो चलिए उनके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव द नेक्स्ट गाना और यहाँ पर एवो ने मैसेज भेजा कि उनका आज बर्थडे है तो ठीक है उनके लिए गाना होगा एंड वी हैव ए के।

ओके एजे मैंने सुना है अजय देवगन का एक ही नहीं सुना था ऑलराइट तो यहां पर नमस्ते करुणा जी कैसी हैं आप नेक्स्ट गाना मैं आपके नाम भी डेडिकेट करना चाहूंगी और यहां पर थैंक यू सो मच गीता जी इतना प्यार भेजने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू दिल से थैंक यू नौशाद बुझावन आपका सलाम कबूल है और आपका हमारे प्रोग्राम में वेलकम है प्रेमिला सिपोल हमारे साथ है नेक्स्ट गाना उनके लिए और साथ ही मैं यहाँ पर चलिए जी गाना आ गया है भाई कोई हमें बता दे कि दिल कैसे जीता जाता है ये प्यार का एक ऐसा सलीका होता है जो सिखाया नहीं जाता इंसान अपने आप सीख जाता है ना गाना मम्मी अमृता के लिए जो बेलरोज बेलिया में रहती हैं और ये हैं गीता जी की मम्मी मम्मी जी आपकी बेटी ने आपके लिए गाना मांगा है आई मीन गाना डेडिकेट किया

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना हमारा आ रहा है आपके लिए. ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप सभी दोस्तों के नाम. तो यहाँ पर ट्रैवल हमारे साथ हैं. हेलो एंड वी हैव द नेक्स्ट गाना फॉर वैसे आपने TAR लिखा है, नाम लिखा नहीं है, तो आपके लिए गाना

होगा. मधु प्रेमिला हमारे साथ हैं, शर्मिला टीना तन्वी अभी काम कर रहे हैं, बॉन कुहार एंड वी से बिग हेलो बिग हाई टू यू गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. और चलिए गाना होगा भारती जी आपके लिए और साथ में हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए भी. तो सिरीश जी वेलकम, ये गाना सुषमा पल्लवी शिवा के लिए होगा और फरहा के लिए भी जो साथ दे रहे हैं हमारे.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है आपका सुहाना सफर नाम यहां पर एकदम हमने नोट कर लिया है वी हैव वनीना एंड आई सेड इट आई एम सेइंग इट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल नेम साथ में है गीता रघुबर फैमिली के लिए गाना मांग रही हैं प्रवीणा कुमार वी हैव स्वीटी एंड नेक्स्ट गाना होगा फॉर माय फ्रेंड लिंडा एंड साथ में गाना होगा प्रेमा सिपति के नाम निजाम की तरफ से उनकी प्यारी सी वाइफ सबीना के लिए वहीं पे विभा हमारे साथ हैं एंड ऑल्सो फॉर क्लागल एंड करुणा वी हैव मजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वी हैव अनिशा के लिए गाना उनके हस्बैंड जॉय की तरफ से और यहाँ पर कोयला फिल्म का गाना नहीं चलेगा बेटा नहीं चलेगा नया गाना हमारे साथ हैं दीपशा ओके तो दीपशा के लिए गाना हम डेडिकेट करेंगे हाय कैसे हो एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए किंग यूजर कैसे हो
2: RM3 रेडियो
1: चलो तो माधुरी जी को डांस करने का शौक है और वो चाहती थी कि वो डांस करे और यहाँ पर साहिल भी काफी मदद कर रहे हैं उनकी तो दोनों को मूड में लाने के लिए भी ये दोनों हमारे प्रोग्राम के साथ छा गए हैं ऐसा करते हैं म्यूजिक कुछ ऐसा चलाते हैं जिनसे अभी और थोड़ा सा मूड बनता जाए और ऐसे में जितना भी स्ट्रेस है उसको हम दूर भगाते जाए

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए जी, खूबसूरत गीतों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर गाना होगा फॉर कविता, मोहन रेखा अंबिका प्रेमिला सबीना के लिए और साथ में अनिल कुमार जी के नाम भी। एंड वी हैव विपिन जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। और परी कहते हैं, सुनो मैं भी तो इधर ही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, बिना पंखों वाली मेरी परी। केतिका और विक के लिए गाना होगा, वही भी बिंदा हमारे साथ जुड़ी है और साथ में यही गाना निष्ठा राम तो हल्के नाम। डिस्को डिस्को तो कर लिया, आप चलो खिसको खिसको करते हैं। निशा भवानी फ्रॉम सुरीनाम, वेलकम टू रेडियो मनोरंजन। एंड यहाँ पर दीप्ति गंधावरी हमारे साथ हैं, संध्या भी आ गई हैं साथ देने के लिए, सीता पदार्थ वेलकम। और ये गाना सपना जी के नाम, जो पता नहीं कितने सारे सपने देख रही होंगी। वैसे इस गाने में भी लोग सपने देखते हैं लेकिन खुली आंखों से।

सोना नहीं चांदी नहीं और हमारे पास बस प्यार ही प्यार है, तो चलिए इसी प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट गाना अरुणा, नजीमा गोवर्धन, मालिनी बिश्राम, इंदिरा की तरफ से नितिश और सविता और ललिता के नाम डेडिकेट करते हैं। और गाना हमें ले जाएगा 1 बजे की समाचारों की ओर।

0: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट आगोआ को 2028 तक बढ़ाया गया है। एसएमई और सहकारिता मंत्री आदिल अमीर मियां के अनुसार ये मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विस्तार से मॉरिशस निर्यातकों विशेषकर टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र के निर्यातकों को 2 वर्षों की अतिरिक्त निश्चितता प्राप्त होगी। फिर भी पोर्ट लुइस अभी से आगोआ के उपरांत की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। उद्देश्य है वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध कायम करना। M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर जनता के साथ होने वाली परामर्श बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक हुई। ये बैठक EIA यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर निर्माण कार्यों के संभावित प्रभावों का आंकलन करना है। M4 मोटरवे का निर्माण शुरू करने का काम पहले अगस्त महीने में शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये अगले साल शुरू होगा। मंत्री अजय गणेश के अनुसार ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय व मॉरिशन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है। राष्ट्रीय मूल राजा मंत्री ने कागोलिन क्षेत्र के विभिन्न ग्राम परिषदों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। अगस्त 2027 में कोमोरो में होने वाले हिंद महासागर टापू खेलों की तैयारियां जारी है। खेलों के लिए बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे के काम पर करीबी से नजर रखी जा रही है। इस तरह मालुजिनी का ओमनी स्पोर्ट्स पैलेस अब खेल आयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कर चुका है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। दुनिया मौसम की घटनाओं के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका प्रभाव एल नीनो के वैश्विक स्तर पर महसूस होने के साथ और बढ़ सकता है। राष्ट्रसंघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने ये चेतावनी दी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इन पिछले 70 वर्षों में सबसे शक्तिशाली एल नीनो हो सकता है और कम से कम फरवरी 2027 तक जारी रह सकता है। एल नीनो दुनिया भर के मौसम के तौर तरीकों को बदल देता है और इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होती है, जबकि दूसरे इलाकों में तेज तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और अब रुख करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बड़े पैमानों पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही है। सुमात्रा और कलिमांतान में लाखों लोग इस तरह आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। इंडोनेशिया की आग से उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इसका असर मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस में भी देखा गया। सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लैक में 82 साल के 82 इयर्स ओल्ड के श्रीमती लक्ष्मी पेचिया पैदाशी नाम अपादू, जो देवमंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री विराज पेचिया के घर कांगारो सेंटर दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। बिस्वालेन प्लेनमायो में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेनमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio,

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: सुहाना सफर
1: में कितने सारे दोस्त आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बस वही कि तो कह रही थी कि चार चांद लगाना है, एक मेरे पास है, तीन आप लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर अनुष्का नूरे मिस्टर नूरेद्दीन जोएल भीमा पेंचिया सूबी लक्ष्य खुशी और साथ में शालिनी दीप जो कि मेलबर्न से हैं। जमन फैमिली के लिए गाना होगा, बिलिया से साथ दे रहे हैं और वहीं पे मोहिनी विमी जितन दुलवा शैलेंद्र रेशमा राम किशोर सभी को हमारे गाने पसंद आ रहे हैं। तो मैं तो सोच रही थी कि उनको बिठाऊं अपनी गाड़ी में और आगे ले जाऊं, क्योंकि ये है आपका रेडियो मनोरंजन RM3 विदिता के साथ आप सुन रहे हैं सुहाना सफर। सवेरे वाली गाड़ी में चले जाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी तो कब से निकल गई है, यानी कि 12 बजे से अपनी मंजिल तक पहुंचेगी ये 2 बजे तक। वेलकम, स्वागत है आपका।

बेड़े वाली गाड़ी से जाएंगे ना, अभी तो टाइम है हमारे साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गाना नहीं, ये तो एक्सरसाइज हो रहा है इस गाने के साथ। अच्छी बात है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। और जोया का हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और साथ में यहाँ पर देविका, लक्ष्मी, हुस्ना, अमृता, संजू, चांदनी, शेख, प्रिया, दीपक बिहारी और दीपक दिव्यदयाल के लिए गाना है वहीं पर। हमारी प्यारी सी बेला लक्ष्मण हमारे साथ है, तो बेला के लिए चलिए खूबसूरत सा गाना है, और मैं होप करती हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर डांस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए माधुरी इधर इधर होंगी, खाना बनाते, चाय बनाते हमें सुन रही होगी, लेकिन वो सुनती ज़रूर है। और यहीं पे गाना होगा तृष्टि, श्रेया और तनिषा के नाम। कहा था ना मूड बदलना नहीं चाहिए। देबो हमारे साथ है, रंजीत सिद्धयाल, नमस्ते आपको।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: गाना डेडिकेट करते हैं फॉर लूना सलूजा की तरफ से श्रेया सिसाहा के नाम आकाश जो कि इंग्लैंड में है भोला फैमिली के लिए गाना मांग रहे हैं फ्रॉम नुवेल फ्रांस वैदेही शांता सोकाली गम करसी प्रियंका तरणी ज्योति गुली और साथ में यहां पर आ गए हैं एजे साथ में रंजीत बिसेसर ट्रैवल आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में यही गाना होगा उनके लिए जिनको मस्ती करने का मूड है रवीना दर्शन रेखा आप सबों का स्वागत करते हैं और साथ में यही गाना डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए आप हैं मतारोआ फैमिली फ्रॉम सेंट जूलियन दुतमो तो चलिए नेक्स्ट गाना आप सभी हमारे प्यारे लिसनर्स के नाम गाना पूछने के लिए और साथ में विनय के लिए जो साथ दे रहे हमारे

देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे। वैसे जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जिसका हमें हमेशा हम खुश होते हैं कि हमें कुछ मिला है वो जीवन भर साथ नहीं होता, और कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ दिल भी। लेकिन बड़े दिल वाला तो बनना पड़ेगा। कविता विक्रम सुरजवाली अपनी वाइफ हेमा के लिए गाना मांग रहे, जो गांव वासे हैं, रेशमा पुरन, जानवी, गीता कालीचरण, आपके लिए गाना।

जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले, ये गाना हमें यही सिखाता है टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव, जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि जीवन में शायद जितना आपके पास है उतना किसी के पास है भी नहीं। सफर। चलिए तो यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करते हैं विष्टि की तरफ से उनके हस्बैंड नीलेश बाबूलाल के लिए, पथरी चोट फैमिली के लिए, और ये है नंदिता की सुन और करिश्मा देव की। संध्या जी हमारे साथ हैं और साथ में ये गाना आरती के नाम डेडिकेट करेंगे। और अश्विन रामबन नमस्ते जी, स्वागत है आपका, कैसे हो? तो गाना आपके लिए भी। और यहाँ पर एंजल शी हमारे साथ हैं। शान कैसे हो? नमस्कार टाइगर क्या बात है भाई, टाइगर को भेज दो हमारे शो में है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा अशोक मुगलदास के नाम, और वहाँ पे गाना होगा आपके लिए विनय कहते हैं वाइफ विमला अभी किचन में खाना बना रही है उनके लिए, वही मैं सोच रही थी इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है, आ रही हूँ मैं। रेखा गोपाल थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स। एंड यहाँ पर गाना होगा नमस्कार आपको, प्यार से आपने हमें बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे कियाना हिलियोना के नाम, और यहाँ पर आपका मैसेज है लिटिल भवी 1 साल की हो रही हैं कल, तो उनके लिए गाना होगा। और साथ में चलो यहाँ पर हमारे साथ है रॉबिन हुड पांडे आ गए भाई। एंड ललिता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बबूलाल फैमिली के लिए जो वाकवा से साथ दे रहे हैं उनके लिए गाना होगा। एंड पूनम श्याम हितेश के लिए, और यही गाना ममा आरती के नाम, शिरीन राम जोन जो हमारे साथ जुड़ी हैं।

हैं रेखा लखन और साथ में अभी नाम तो लिखा नहीं आपने लेकिन बस हेलो हाय लिखा है तो चलिए गीत होगा आपके लिए फिल्म का नाम है 1920 मीत मेरे मन की तुझसे ये वादा है क्या वादा है चलिए सुनते हैं

0: चलिए जी, यहाँ पर अहमद मुस्तफा राम जोन हमारे साथ जुड़े हैं नेक्स्ट गाना उनके लिए, लक्ष्मण मधु नहीं मलू। ओके, कैसे हो चाचा जी? गाना आपके लिए। चलिए आपके नाम एंड थैंक यू सो मच, प्रणाम स्वीकार है मुझे। और विमला देवी जी हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं और वहीं पे नास हमारे साथ है, कहती है कौन सा रेडियो है भाई, ये है रेडियो मनोरंजन RM3। और यहाँ पर क्वीन हमारे साथ जुड़े हैं, राजफा आपका वेलकम करते हैं, और साथ में अंजू मंगर हमारे साथ हैं, तो उनके लिए हम ये नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं। ललिता स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में, एंड साथ में यहीं पर हम गाना जो है डेडिकेट करते हैं आपके लिए, डैनी जगरू गुडलैंड से दे रहे हैं साथ।
1: You're listening to RM3 Radio मन

0: कर रही हूं माधुरी जी कहती है 3 बजे तक रह जाओ ना वो बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे जो कहते हैं मम्मी मुझे ये चाहिए मुझे वो कर दो ना ये कर दो ना वैसे ही हो जाते हैं बच्चे लेकिन जाना तो पड़ेगा हेलो वीर सिंह कैसे हो आप चलिए नेक्स्ट गाना जो है नीता राय के लिए जो मलेशिया से अभी सुन रही थी उनको कहेंगे बिग हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मेक श्योर कि आप मंडे को हमें ज्वाइन करें और 12 बजे ठीक है वैसे प्रोग्राम तो कल भी होगा लेकिन कल हम नहीं होंगे ना इसीलिए बोल रही थी लेकिन कल आप होंगे यहाँ पे कल हमारे दोस्त होंगे चलिए यहाँ पर सितोहल फैमिली के लिए गाना डेडिकेट करते हैं निफ्यू विदेश के नाम उनका आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे ये है सुमन सिबरत की तरफ से और गाना होगा नीलिमा के लिए एंड चांदनी जो है सिद्धरतन फैमिली के लिए गाना मांग रही है वेद राम रिचा वी हैव सिद्दीक वी हैव पूजा एंड वी हैव श्वेता जो हमारे साथ जुड़े हैं
1: RM3 Radio. Radio.
0: बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाना है तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा वैसे ये गाना मुझे श्रीदेवी की बहुत याद दिलाती है बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस थी कमाल की डांसर थी और कमाल का किरदार निभाने वाली चलिए ये गाना जो है वैसे चांदनी कहते हैं उनके हस्बैंड महेंद्र के लिए जो अभी शॉप में है कहते हैं हम अभी आलमियों बीच में हैं साहिल कहते हैं लास्ट टाइम 1:30 बजे निकल गई थी आधा आप 30 मिनट्स लाइव ड्यू हैं फिर कभी बदला लेने ना बच्चा अभी तो जाने दो अभी जाने में थोड़ा सा टाइम है पर चलते चलते आपको थैंक यू ज़रूर कहना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस रेडियो मनोरंजन को अपनी फैमिली बनाने के लिए

आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मिथवा, अब जाने का समय भी हो गया है, तो चलिए चलते हैं। और चलते चलते नेक्स्ट गाना जो है कविता हलकोरी के नाम डेडिकेट करते हैं, साथ में जितने भी लोगों ने हमारे साथ, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहे। और किसी ने कहा कि भाई मैं तो इमेजिन कर सकती हूँ, मैं तो जा रही हूँ येलो साड़ी पहन के हवा में खड़ी होने के लिए। बबीता कहती है हम लेट, यहाँ पे सन हमारे साथ है एंड प्यार भेजा है हमें माधुरी ने। और साहिल चलिए जाने का टाइम हो गया है, आई होप कि आप लोग हमें ज़रूर अभी अगले प्रोग्राम के लिए वेट करेंगे। जौहरी जी आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए, एंड ऑल्सो ये गाना होगा आपके नाम, अनीता परतोब। जोहरा थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।

0: इसमें कई कार्य दल भी कायम किए गए हैं ताकि अलग-अलग विषयों पर गहन तरीके से कार्य हो सके। अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट अगोआ को 2028 तक बढ़ाया गया है। एसएमई एवं सहकारिता मंत्री आदिल अमियामिया के अनुसार ये मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विस्तार से मॉरिशन निर्यातकों विशेषकर टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यातकों को दो वर्षों की अतिरिक्त निश्चितता प्राप्त होगी। फिर भी पोर्ट लुइस अभी भी अगोआ के उपरांत की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। मकसद है वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध कायम करना। एक नया प्रारूप चार खेल और ट्रायथलों के 40 साल पूरे होने के संदर्भ में रविवार 6 दिसंबर को लिमोन में फेस्टिवल कस्कोफी 2026 का आयोजन होगा। ये खुले आसमान के नीचे खेलों का एक बड़ा उत्सव होगा जिसका आयोजन मॉरिशन ट्रायथलों फेडरेशन, स्विमिंग फेडरेशन, साइकिलिंग फेडरेशन और रोंडो ट्रेल नेचर के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कस्कोफी ट्रायथलों होगा। इसके अलावा कई अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। विदेशी समाचारों में शुरुआत करते हैं मौसम संबंधी जानकारी के साथ। जी हां, एल नीनो मौसम संबंधी घटना के 2027 तक और मजबूत होने की आशंका है जिससे अगले साल भी चरम मौसम की घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आज ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा कि उसके पूर्वानुमानों के अनुसार असाधारण रूप से गर्म प्रशांत महासागर के तापमान के कारण फरवरी 2027 तक एल नीनो के बने रहने की लगभग 100% संभावना है। बहुत मजबूत एल नीनो दुनिया भर में बारिश और तापमान के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और टाइफून जैसी चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एल नीनो हमारी आंखों के सामने असामान्य रूप से बड़ा रूप ले रहा है। इसके कारण लैटिन अमेरिका में भारी बारिश और सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। और बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है इंडोनेशिया। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही है। सुमात्रा और कालिमांतान में लाखों लोग इस तरह आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। सांस से जुड़ी समस्याओं बीमारियों के कारण हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लैग में 82 साल के 82 इयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी पेच्या पैदाशी नाम अपादू जो देवमंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री विराज पेच्या के घर कांगारो सेंटर दे फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कांबेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:45 PM। बिस्वालेन प्लेन मायो में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेन मायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11 AM। मोसेलमो प्रुडोम रिवे डिजांगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के शानुगम ब्रिजित जो नादन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री सबिदवैन ब्रिजित के घर मोसेलमो प्रुडोम रिविया डिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांचाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: स्वागत करते हैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम, जहां पे हम बात करते हैं

0: रंगमंच के बारे में, रंगमंच की दुनिया के बारे में, रंगों की भाषा में बात करते हैं और मंच पे जो धारा बहती है उसी में अपने आप को बहा देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए है नारायणा नारायणा की टीम। स्वागत करते हैं निखिल शिवनत और राजेश और सितोहल, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले आप दोनों को बधाई, क्योंकि सोशल मीडिया में हम देखेंगे और बहुत सारे लोगों को बात करते हुए जब हम सुनते हैं तो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नारायणा नारायणा म्यूजिकल एंड ड्रामा कंसर्ट। शुरुआत करते हैं निखिल जी आपसे। आप तो MBC में ही आपके पार्ट टाइम काम करते हैं, रेडियो मस्ती में काम करते हैं और आप एक आर्टिस्ट है, सिंगर है आप, और नारायणा नारायणा कंसर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का प्रोग्राम था?
1: इट वॉज अ मिक्सचर बोल सकते हैं, एक फ्यूजन था थिएटर के बीच में, थिएटर के बीच में, म्यूजिक के बीच में, कॉन्सर्ट के बीच में। और मेरा अटेम्प्ट यही होता है कि अक्रॉस जॉनर जिसे कहते हैं, जैसे एनिमेशन था लेड स्क्रीन्स पर, इंस्टेड ऑफ लाइक रियल सेट्स वी हैड जस्ट दिस लेड स्क्रीन और उसी पर सब एनिमेशंस आ रहे थे, एनिमेशंस विच आर इंस्पायर्ड बाय अमर चित्र कथा, जहाँ से मैंने ये कथा जाना है द फर्स्ट प्लेसेस। तो ऐसे करते करते जितने भी सारी इन्फ्लुएंसेस हैं उनको इंक्लूड करना, दैट वॉज द ट्रायल इन नारायण नारायण।
0: निखिल शिवनत को हम जानते हैं एंड नाउ आपका एक ग्रुप है निखिल एंड द गैंग। तो आप एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, ना सिर्फ स्थानीय लोकल बल्कि इंटरनेशनल सिंगर, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी आपने भाग लिया है और बहुत लोग आपको जानते हैं, विदेश में भी आप लोग आपको जानते हैं, रेडियो में आप एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। तो बीइंग ए सिंगर, आपने किस तरह कैसे सोचा कि चलिए हम उसको एक जो पौराणिक कथा है उसको लेकर और इसमें ड्रामा डालेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया?
1: ये आइडिया वैसे तो काफ़ी पहले से था, जब कथा होती थी मंदिरों में, तब जिन लोगों को भाषा पता नहीं थी, जिन लोगों को हिंदी उतनी समझ में नहीं आती थी, वो उस कथा से अलग रह जाते थे
0: और खुद की कथा बोलने लगते
1: हैं। हाँ, और अपनी कथा शुरू कर देते थे। सो द आइडिया वाज कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया म्यूजिक से, म्यूजिक को माध्यम बनाकर, फिर थिएटर भी मैंने काफी किया है, आदर्श भाई जैसा नहीं लेकिन थोड़ा सा किया है, फिल्म किया है। सो ये सब जो माध्यम है ये मेरे हिसाब से कहानी बताने के माध्यम से, मैं अपने आप को सिर्फ सिंगर नहीं बताता, मैं अपने आप को स्टोरी टेलर बताता हूँ और ये बस माध्यम है वही स्टोरी बताने के लिए।
0: जहाँ तक हम जानते हैं और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स देखे हैं, नाटकों में भाग लिया है, कॉन्सर्ट में भाग लिया है, वी कैन से ये मॉरिशस में पहली बार हुआ है विद प्योरली लोकल सिंगर्स।
1: हाँ,
0: लोकल आर्टिस्ट।
1: आई थिंक मॉरिशस में पहली बार हुआ है। लाइव म्यूजिकल्स हुए हैं लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट लाइक हिंदी कॉन्टेक्स्ट में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, आई थिंक इवन वर्ल्ड में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है।
0: नारायणा नारायणा एक म्यूजिकल एंड ड्रामा का कॉन्सर्ट है जहाँ पे निखिल एंड द गैंग और ओमजा एंड ग्रुप, ये दोनों मेन ऑर्गेनाइजर्स थे और बहुत सारे थे।
1: माजिका था, इकोस था, हमारे साथ माधव भाई थे, उनकी उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो ऑडियंस है हमारे साथ थी, हमारे साथ आदर्श भाई और उनकी टीम थी, उनकी टोली थी थिएटर। सो इट वाज अ बिग कोलैबोरेशन बिटवीन आर्टिस्ट।
0: तो चलिए आप के इस कॉन्सेप्ट को, आपकी इस कहानी को रियल स्टेज पर प्रस्तुत करना बहुत बड़ा काम था, आदर्श से बात हम करना चाहेंगे। आप नाटक के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं और शूटिंग फोटोज़ वगैरह इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो निखिल का जो कॉन्सेप्ट को आपने स्टेज पर प्रस्तुत किया, जो भी मूवमेंट्स थे, जो भी लाइट्स थे, जो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आदर्श ने कोऑर्डिनेट किया है, आदर्श ने बोला है, तो निखिल के विचार को स्टेज पर लाना आपके लिए मुश्किल था या फिर आसान था?
2: पहले तो मैं भाई निखिल का शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उसने हमारी टोली के बारे में सोचा। मुझे आज भी याद है जब वे पहली बार मेरे यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा भाई एक प्रोजेक्ट है, हम ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या आप मुझे कहा

0: कहानी सुना सकते हैं। फिर जब उन्होंने कहानी शुरू किया, उसने सुनाने की जब शुरू किया तो उन्होंने कहा वाओ, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता था, मैंने भी नहीं देखा है। और हम म्यूजिकल प्ले करते हैं पर जैसा ये करना चाहते थे मुझे लगता है मॉरिशस में पहला ही है, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं करते। हम प्री रिकॉर्डेड या लाइव करते हैं पर म्यूजिक में भी 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स बस यही होता है। पर वे नारेशन कर रहे हैं हिंदी और क्रियोली में ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए। सो दिस वॉज अ वाव फैक्टर मेरे लिए। और डायरेक्शन की बात करें, उन्होंने पहले से सोच रखा था मुझे, भाई ये यहाँ करना है, यहाँ ये करना है, आप कुछ अपना मसाला डालिए और उसको तैयार कीजिए, आप अपने कलाकारों को ढूंढिए और देखिए कौन फिट होता है और कौन क्या क्या कर सकता है। तो द बिग वर्क वॉज ऑलरेडी डन बाई हिम, मेरे लिए सिर्फ उन्होंने मुझे दे दिया था और मुझे सिर्फ इसकी तैयारी करनी थी, तो मेरे लिए आसान हो गया था।
1: लाइव नारेशन चल रहा था, जब नाटक की बात करते हैं आदर्श तो हाँ नारेशन डायलॉग्स तो लाइव होते हैं, लेकिन जब हम नाटक करते हैं तो म्यूजिक प्लेबैक होता है। संस्कृत थिएटर में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो लाइव म्यूजिक हुआ करता था। तो यहाँ पे 2026 में लाइव नारेशन चल रहा है निखिल जी, लाइव एक्टिंग चल रही है, लाइव म्यूजिक चल रहा है और उसके साथ इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ लाइव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ये नहीं सोचा कि, क्योंकि ये मॉरिशस में पहली बार है, कहीं ना कहीं आपने ये नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगा, या फिर यू आर टोटली पॉजिटिव?
2: देखो मेरा एक्चुअली स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है कि आई लाइक many things that cannot be coordinated to be coordinated. ये हमारा this is our drive. और यहाँ पर हमें मौका मिल रहा था ये सब करने के लिए, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, आई वॉन्ट से नो, लेकिन जैसे कि आदर्श भाई हुए ऑन द थिएटर फ्रंट, म्यूजिकल में हमारा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ओमजा का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोस माजिका का पहले से एक्सपीरियंस है, सो वी नो सम ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स टू अवॉइड। उसके अलावा कुछ नए प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, उनसे झेलना, दैट्स द फन ऑफ इट। लेकिन जो मेजर पिटफॉल्स हो सकते हैं फॉर टोटल बिगिनर, वो शायद अपने अपने फील्ड्स में सबने लाइक स्पॉट कर लिए थे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एवैल्यूएशन पहले से हो गया था।
1: आदर्श, आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए?
0: मेरे लिए सबसे पहले कॉस्टिंग था, क्योंकि निखिल भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दीज कैरेक्टर्स सम शुड बी मेल, सम शुड बी फीमेल, और कहानी नारद के बारे में है, जो हमने उनके बारे में सुना था पर उतना जानते नहीं थे कि उनकी कहानी क्या है, क्या हुआ था, और उन्होंने जब कहानी भी लिखा है तो शायद ही हैज़ इंक्लूडेड मेनी न्यू थिंग्स, ओके, न्यू थिंग्स, एंड मे बी कॉन्सेप्ट वाइज इट वॉज डिफरेंट, और मे बी अडाप्टेशन भी उन्होंने किया है। क्यों? बिकॉज ही हैड टू कनेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पुराण पर आधारित नाटक हैं बट इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ मॉडर्न वे, सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन। कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो वी हैड, आपने कहा म्यूजिक चल रही है, नारेशन हो रही है, वेन वी डू प्लेबैक जैसे प्री रिकॉर्डेड नाटक जब हम करते हैं, जब कोई बात कर रहे हैं वी डू लिप सिंक, हम बात करते हैं उसके साथ, पर इसमें ऐसा नहीं था। सो द आर्टिस्ट हैड टू नो यू मस्ट improvise on the voice that we are giving. It's not the same situation. जो वो बोल रहे हैं वो नहीं करना है, exactly वो नहीं करना है, उसके हिसाब से close to it you have to act, क्योंकि सब dialogues fit नहीं होंगे acting, क्योंकि it's more like a narration, it's not like dialogue delivery. So ये बहुत कठिन था कुछ कलाकारों के लिए, so we had to make them adapt and we have to give them, it was more, क्योंकि मैं भी लाइट्स भी देख रहा था भाई कशिश के साथ, तो मैं जानता था मुझे सिर्फ पोजीशनिंग देखना था, आर्टिस्ट कहाँ पर आएगा, कहाँ रुकेगा, उस समय क्या करेंगे, और उस समय एज पर द नारेशन क्या क्या होना चाहिए, तो वो हो रहा था। प्रॉप्स की बात करें तो तरुण था जिन्होंने हमारी सहायता की।

0: उसमें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पर आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज द कास्टिंग. बट कहते हैं ना, समटाइम्स इन सर्च ऑफ गोल्ड मे बी फॉर दिस शो वी गॉट मेनी डायमंड्स.
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. आदर्श, स्टेज पर लगभग कितने आर्टिस्ट थे?
0: 45. सिर्फ ये नाटक के कलाकार हैं, म्यूजिशियन को छोड़ दीजिए, टेक्नीशियन को छोड़ दीजिए, पर मैं ये नहीं कहूँगा, भाई ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया था, पर आई वुड से इट्स अ टीम वर्क. मेरे साथ भाई प्रभात मुहाबियर थे, केशव थे, और हंस थे, और अन्य मेरे भाई भी थे जो सहयोग कर रहे थे. मैंने कहा था अगर मैं इस स्पॉट को देख रहा हूँ, भाई म्यूजिकल को देख रहा है, वी कॉन्ट मैनेज ऑल दीज टुगेदर. सो आई थिंक माई ब्रदर्स ऑल्सो हेल्प मी, भाई प्रभात ने भी हेल्प किया. सो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. मैंने इतने बड़े टीम के साथ काम नहीं किया है. वी हैव डन मेनी प्लेज, बट इतने सारे लोगों के साथ वी हैव टू लाइक, ये 2 घंटे का नाटक है,
1: 2 घंटे का,
0: तो जो हम करते हैं 30 मिनट्स या 1 घंटे का, वो नहीं था,
1: फुल लेंथ नहीं था.
0: यस, नहीं था, और समय भी कम था. और भाई ने कहा था, मैंने भाई से कहा था हम कर पाएंगे, हो जाएगा, हो गया, फिर हो गया. व्हाट अ सक्सेस.
1: हमको भी मौका मिला था इस नाटक में भाग, इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, और मुझे याद है अभी तक, इट्स लाइक शेयरिंग. मुझे भी याद है कि मैं बार बार निखिल से कह रहा था भाई हो जाएगा ना, भाई हो जाएगा ना,
2: नारायण की कृपा से हो गया,
1: हो गया.
0: एंड वी मस्ट से नारायण खुद आप थे हमारे लिए. फर्स्ट यू आर लाइक द डिवाइन स्टैंडिंग हिमसेल्फ ऑन द स्टेज.
1: वो हमारा सौभाग्य था कि हमको मिला, बातचीत हुई ना निखिल से. निखिल ने कहा कि भाई जी आप आ जाइए. हमने कहा ठीक है.
2: दिस वाज द फर्स्ट कास्टिंग चॉइस दैट आई वाज शो डेड शो अबाउट. ये नारायण बनेंगे तो और कोई को, किसी को नारायण नहीं बनना.
1: ये सौभाग्य हमारा कि नारायण को खेलने का मौका मिला. हमने कहा कितने आर्टिस्ट थे?
0: 45.
1: सिर्फ नाटक के
0: लिए.
1: अब म्यूजिक की ओर आते हैं. लगभग कितने आर्टिस्ट थे?
2: 12 आर्टिस्ट्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. एंड वी मस्ट हैव हैड अ टेक्निकल क्रू ऑफ अबाउट 5-6 पीपल वर्किंग जस्ट बैकस्टेज. सो बस बैकस्टेज, वो मेन कंट्रोल पॉइंट पर नहीं, उसमें
0: बहुत ज्यादा लोग थे.
1: 63 आर्टिस्ट, जब आप बात कर रहे हैं मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी. 63 आर्टिस्ट इंक्लूडिंग ड्रामा साइड, म्यूजिकल साइड, बैक स्टेज. 63 आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट करना मतलब अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि ये पहली बार है मॉरिशस में. तो एक नारायणा नारायणा म्यूजिकल ड्रामा प्ले आप लोगों ने प्रस्तुत किया है स्टेज पर, और लोगों का फीडबैक कैसा था?
2: वेरी गुड, वेरी गुड. लिखते समय, बनाते समय ये डर था कहीं एक तो वो कॉन्सर्ट पार्ट थिएटर पार्ट पर भारी ना पड़ जाए, एक तो ये बैलेंस का कंसर्न था, और द सेकेंड कंसर्न वॉज कि कहीं किसी को समझ में ना आए. पर ये दोनों कहीं ना कहीं दिस वॉज प्रूवन टू बी रॉन्ग. बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और जिनसे भी पूछा गया कि हाँ समझे, स्टोरी को समझे, जिन्होंने शब्द नहीं समझे थे, वो हिंदी के शब्द नहीं समझे थे, वो क्रियो समझे. जो दोनों नहीं समझते थे, दे लुक्ड एट द विजुअल्स और द म्यूजिक और द फील, वो समझ गए कि क्या हो रहा है. तो जो जो मैसेज था, जो स्टोरी टेलर का मैसेज होता है, वो मेरे हिसाब से पास हो पाया.
1: एक और प्रश्न निखिल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आई विल डेयर टू आस्क यू, क्योंकि दिस इज अ प्रोग्राम, एक म्यूजिकल ड्रामा कॉन्सर्ट था रिलेटेड टू अवर पुराण, नारद मुनि के ऊपर, नारायणा के ऊपर. तो और इट वाज अ पेड कॉन्सर्ट. तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम जानते हैं, जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो चलिए मंदिर में मिलेगा, पंडित जी के साथ मिलेगा, लेकिन एक पेड कॉन्सर्ट, कहीं ना कहीं आपने ये नहीं सोचा कि चलेगा या नहीं चलेगा?
2: आई थिंक ये कलाकारों, इंडियन प्रथा, सनातन प्रथा के कलाकारों में ये होता है, ये स्टाइल ही होता है. जैसे हम देखते हैं कथावाचक जैसे होते थे पुराने वाले, तुलसीदास जिनके ऊपर अगले वाले के लिए रिसर्च चल रहा है.
1: तो चलिए रिवील भी हो गया.
2: अगले वाले के लिए रिसर्च चल रहा है. वो कथावाचक थे, वो बाजा लेकर खुद गाते थे.

0: ऑडियंस के हिसाब से वो कहानी अडेप्ट करके फिर इंटरप्रेट करके फिर बताते थे. उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी ही लिखी जो कहानी है उसके साथ बरवई रामायण, बरवई रामायण जिसे कहते हैं, आप बरवई रामायण देखोगे तो वो लगता है कि इट्स स्टेज डायरेक्शंस, कि अगर मानस को का रूपांतर थिएटर में करना है तो ये लो सक्सेसिंग डायरेक्शन. तो ये आई थिंक वी आर नॉट इन्वेंटिंग द व्हील, ये पहले से हुआ करता था, बस मॉडर्न माध्यम से हम ये करने की जुर्रत कर रहे हैं.
1: निखिल को हम जानते हैं स्टेज पर गाते हुए, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हुए. आपकी रुचि पौराणिक कथा में भी है.
0: एंथ्रोपोलॉजी, मुझे पुराने चीज़ें स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है. और जो एसेंस है वो एसेंस कैसे बराबर रहता है, जैसे कि हम भी थोड़े से कथावाचक हुए अभी, लेकिन अपने माध्यम से अपने हिसाब से दक्षिणा भी ले रहे हैं. उनको उनको दक्षिणा में खाना मिलता था, उनको उनको भिक्षा मिलती थी, हम फीस मांग रहे हैं टिकट की.
1: क्या बात है. नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. वही कथा जब हम टीवी में देखते हैं, वही कथा जब हम मंदिर में पंडितों की वाणी द्वारा सुनते हैं, वही कथा हम लाइव देख रहे हैं. हाँ. एक्टिंग के साथ. आदर जी, एक प्रश्न मैं पूछना, वैसे आपसे ये बांटना चाहूँगा, जब हम लाइव नरेशन सुन रहे थे, हमने निखिल को गाते हुए सुना, लेकिन बोलते हुए नरेशन, आपकी टिप्पणी, आप क्या सोचते हैं इनके नरेशन में?
2: इस पर हमने विचार किया था. आई थिंक थर्ड मुलाकात जब हमने किया था, मैंने कहा था भाई नरेशन कर रहे थे, मैं थिएटर का कलाकार हूँ, ये सिंगर हैं. एक पॉइंट पर आता है जब विष्णु, उस पर हम याद है हमने बात किया था, जब विष्णु वो सुदर्शन चक्र उठाता है और फिर वो थम जाता है. भाई वो डायलॉग आपको याद है, अगर आप बोल सकते हैं उसे, ओके कुछ मिनट में अगर हो सके तो. उस समय क्या हुआ, मैंने उनको कहा आई थिंक दिस बॉट यू हैव टू बी लाइक मोर वॉइस शुड बी वेरी पावरफुल लाइक ड्रामेटिक. फिर उन्होंने कहा नो, लेट्स चेंज इट, वी शुड बी नरेटर्स, नरेटर्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्टर्स. यानी कि जब वो अपने ढंग में वो कहेंगे, वो एक्टिंग उस कलाकार को देना है, यानी कि नारायण को वो एक्टिंग करके इफेक्ट्स के साथ, लाइट्स के साथ वो फील आ जाएगा. सो वी डोंट हैव टू प्ले विद द वॉइस लाइक गो हाई पिच एंड वो टोनेशन के साथ. सो दिस वाज डिफरेंट, दिस वाज डिफरेंट. मैंने कहा ओके. देन कुछ दिन मैंने पूरा जब नाटक सुन लिया था, फिर मैंने कहा यस दिस इज डिफरेंट. नाटक को समझने के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट द नरेटर शुड बी लाइक द सेम फ्लो एज द डायलॉग डिलीवरी, इट शुड बी नॉट ऑन द सेम टोन. सो वो अपना जैसे कर रहे हैं वो बेस्ट है. कलाकारों को प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है जब वो उस पर एक्ट कर रहे हैं. दिस वॉज.
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा निखिल से, अगर आपके पास वो डायलॉग है जहाँ पे हिंदी वाला डायलॉग जहाँ पे नारायण कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे लिसनर्स को आप.
0: यहाँ पर क्या होता है कि नारद जी नारायण से बोल रहे हैं कि तुम्हें ये किसान कैसे पसंद, मेरी भक्ति के ऊपर इसकी भक्ति कैसे कैसे आती है. तो वो बोलते हैं नारद को ये समझ ना आया, प्रभु आनंद के लिए जिसने सुरों को सूत्रों में बांधा था, घोर तप करके जिसने सरस्वती माँ का वरदान पाया था, अपने मनोबल से जिसने काम को हराया था, उसके आगे जीते कैसे इस तुच्छ मनुष्य की भक्ति और उसकी विलासी तामसिक माया. इतने में मैं नहीं चाहता था कि नारेशन हो, क्योंकि इट्स अ पावरफुल इमेज इन इटसेल्फ. उधर मैं नहीं चाहता कि ध्यान भटके, बस देखो. और उसके बाद टिप्पणी आती है, नारायण चाहता तो नारद के घमंड का उत्तर सुदर्शन से भी दे सकता था. ऐसा कि खुद नारेटर को डर लगा भी.
2: यस. और उस समय क्या हुआ, आपके एक्टिंग आपने ही वो रोल किया था, तो उस समय आपने नोटिस किया था, हमने कहा था जब वो नरेशन स्टॉप हो जाता है, यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन द सुदर्शन चक्र, आप नीचे रख देते हैं और स्माइल करते हैं, फिर डायलॉग आ जाते हैं, लोगों को समझ में आ गया.

0: अगर नारायण चाहते तो उसी समय तो वो योर्डन से कनेक्ट हो गया।
1: निखिल जी, आपने अपने स्क्रिप्ट को कितनी बार पढ़ा?
2: बहुत बार। मड़ोड़ा एक, ये दूसरा स्क्रिप्ट है भाई, दिस इज अ सेकंड स्क्रिप्ट कंप्लीटली। जब पहले शुरू किया था तो स्क्रिप्ट कुछ और ही था, इट वाज लाइक बैक स्टोरी ऑफ नारद कि वो उपबरहण कैसे थे, फिर उन्होंने कैसे फिर जन्म लिया एक छोटा बालक बनकर नारायण की भक्ति करके, फिर उन्होंने नारायण की के दर्शन पाए और फिर बने वो इस कल्प में नारद। तो वो कहानी फिर ऐसा लगा कि हाँ, लोग तो नारद को जानते हैं पहले से, ओरिजिन स्टोरी करने में उतना उतना मज़ा नहीं आएगा जितना उसको गिराने और फिर उठाने में होगा।
3: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
0: मजे की बात ये भी है, हर बार आप पूछते हैं कलाकारों के बारे में कितने कलाकार थे, या आपको जो पता चल गया है, पर क्या आप जानते हैं इसमें, इस नाटक में 4 years old सबसे छोटा कलाकार था हमारा, और सबसे एल्डर हम कहेंगे मिस्टर प्रेम, जो आई थिंक 75+ हैं। तो यू कैन सी 3 generation, 4 generation लाइक वर्किंग टुगेदर, सो दिस वाज अ बिग अचीवमेंट एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट भाई।
3: बहुत ही सुंदर, 63 आर्टिस्ट ऑन स्टेज इंक्लूडिंग ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज ऑल्सो। अदर जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब हम नाटक के बारे में बात करते हैं, हम विजुअल्स देखते हैं, हम डायलॉग सुनते हैं, यहाँ पे एक्टर्स म्यूट होते हैं, इस टाइप के एक्टिंग, इस टाइप के थिएटर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: ये होता है, हम जैसे बात ये नारेशन हो रहा है, पर कुछ ऐसे नाटक हैं जो हम कहते हैं माइम शोज, तो इट्स ओनली एक्टिंग, सो यू हैव टू एक्ट, क्योंकि जो हमारा नारद भी था, जनिता दाजी हम कहेंगे, आई थिंक इट्स द बेस्ट कास्टिंग दैट वी हैड गॉट फॉर हर।
3: इसके बारे में एक खास प्रश्न है, मैं पूछूंगा जरूर पूछूंगा जरूर।
0: तो जैसे शी वॉज प्लेइंग ओनली विद हर जेस्चर्स एंड हर कैसे कहेंगे, यू कैन सी द स्पार्क इन हर आईज। कई लोगों ने मुझसे कहा है वॉज शी क्राइंग, मैंने कहा इट्स द इमोशन दैट वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ हर, सो इट्स मोर लाइक द एक्सप्रेशन, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। नारेशन ठीक है, पर कैसे कहते हैं माइम शोज होते हैं, सो इन माइम शोज वी डोंट हैव लाइक एनी डायलॉग्स, यू जस्ट हैव ए कॉन्सेप्ट, यू हैव एन इवेंट दैट हैज ऑकर्ड, और उस पर कलाकार को सिर्फ एक्ट करना है। जैसे आप, मुझे पता नहीं है अगर दर्शक सुन पा रहे हैं या नहीं, इस आप नल खो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये मैंने सिचुएशन दे दिया है, ओके वैसे ही हमने कलाकारों को भी वो सिचुएशन दे दिया था कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर जब नारद उपबरण के रूप में आता है तो वो बैठा है, ही इज लॉस्ट इन हीज ओन स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि नारायण ने उसके साथ जैसे छल कर दिया, ही इज जस्ट सिटिंग, लोग आ रही हैं, ये दे रही हैं। रिलेटेड टू दिस सीन नारेशन इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट एक्टिंग वाइज लोगों को पता चल रहा है कि ओके, नारद का जैसे वो कंधावर है उसको लेकर उसको पगड़ी की तरह बांध दिया तो वो इंसान जैसे आम कॉमन मैन बन गया, तो उसके सामने हमने टोकरियाँ रख दी, तो इट्स लाइक नाउ ही इज लिविंग बिटवीन villagers, so he has become part of the villagers, so yes, so these are more like acting wise, so there's not narration related to it, to it's more like the expressiveness, jaise wo express kar rahe hain ye logo tak connect ho jaye, or I think this is the most important for an actor to connect with the audience.
3: और टाइम लास्ट भी आपने दिखाया किस तरह से नारद आए और उसकी शादी भी हो गई है, उसकी पत्नी गर्भवती भी हो जाती है।
0: ये भाई का आइडिया था, वो चाहता, हमने सोचा था पहले हम क्या करेंगे, नारद मालती के पीछे जाता है, फिर जब आएंगे एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा, फिर वो निकलेंगे, फिर बड़ा हो गया, पर हमने कहा क्योंकि वक्त की पाबंदी थी, बीच में
2: जहां पर हमने किया है the area to work backstage, that's quite long. तो एक गाने में ये सब करना था तभी
0: जब छोटा बच्चा आया, उसने म्यूजिशियन को देखा, फिर उसकी माँ आती है, उसको जैसे वो भागता है, जब वो निकलता है बड़ा आ जाता है, जो पर्वत जो नारद का बेटा था

0: तो वो इट्स वाज लाइक पीपल कैन कनेक्ट विद दैट. उनको समझ में आ गया. यू डोंट नीड डायलॉग्स, यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड बाय द विजुअल्स यू गेट एन आइडिया दैट ओके नारद हैड अ सन, वो छोटा था, वो वहां जाता था, फिर वो बड़ा हो गया, फिर बड़ा एंड जब वो बैठा भी है इट्स वो तब नरेशंस आता है. वी आर जस्ट सिटिंग बट वी आर एक्सप्रेसिव जस्ट ऑन द डायलॉग्स. उनको पता चल गया कि ओके पर्वत वो म्यूजिक
1: प्रेमी है.
0: हाँ प्रेमी है पर उसके पिता के कारण जिसने सब त्याग दिया है. सो ही इज लाइक हेजिटेंट.
2: लिमिटेड स्टेज पर अनलिमिटेड क्रिएटिविटी थी वहाँ पे. बहुत कुछ दिखाई दिया वहाँ पे. और निखिल जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो वाला पार्ट नारायण नारायण का जो धुन है वो हमको थोड़ा सा गा के सुनाइएगा ताकि वो माहौल फिर से क्रिएट हो जाए.
1: ये वैसे तो थीम होने वाला था पूरे शो का, बट वी चोज लाइक पॉपुलर सॉन्ग्स फॉर पीपल टू सिंग अलॉन्ग.

0: बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम में एक बार जब नारायण आप लोग गाते हैं तो मतलब खुशी का माहौल था, और दूसरी बार मतलब सैडनेस,
1: क्योंकि वो लॉन्गिंग,
0: वो लॉन्गिंग, और नारद रो रहा है कि कब भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके रिसर्च के बारे में, क्योंकि पौराणिक कथा है, इसके रिसर्च के बारे में खास तौर पे क्वेश्चन में उस वीणा के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे।
1: सो रिसर्च जैसे कि मैं बहुत पसंद करता हूँ एंथ्रोपोलॉजी, तो पढ़ता रहता हूँ पेपर वगैरह, रिसर्च वगैरह। नारद कैरेक्टर के लिए रिसर्च शुरू हुई अथर्ववेद से, एंड इट कम्स डाउन टू लाइक वेरी रीसेंट टेक्स्ट, एक राधे श्याम रामायण जिसे कहते हैं, राधे श्याम जिससे रामलीला होती है, सो वहाँ तक आती है रिसर्च, क्योंकि नारद की जो पूरी कथा है वो कहीं किसी एक पुराण में मिलती नहीं। विष्णु पुराण में उसका उल्लेख है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका उल्लेख है, शिव पुराण में देयर थ्रो अवे पार्ट्स ऑफ लाइन, एक लाइन भी नहीं है।
0: आपने ये सब पढ़ा?
1: हाँ।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: क्योंकि नारद स्मृति, नारद की लिखी हुई संगीत मकरंड, लाइक वेरी टेक्निकल, नारद कम्स ऑफ अदर वेरी टेक्निकल पर्सन, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि नारद की वीणा ऐसी क्यों है, क्योंकि वो गायक हैं, नारद इज प्राइमरीली अ सिंगर, और ये जो वीणा उनकी दिखाई गई है,
0: जो फिल्मों में दिखाई जाती है
1: दैट्स अ मेलोडिक, तो आदमी अगर खुद ही गाने के साथ मेलोडी बना रहा है तो दूसरा मेलोडी तो बनेगा नहीं, ये अकंपनी होना चाहिए। तो संगीत मकरंड के एक अकंपनिंग टेक्स्ट में हमें मिलता है कि नारद की जो माहती वीणा थी, द माहती इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 21 डिफरेंट स्ट्रिंग्स, ठीक, और कहा जाता है कि ये 21 स्ट्रिंग्स 21 श्रुतियों को रिप्रेजेंट करते हैं, सा और रे के बीच में देयर आर 21 और 22 प्लेसेस दैट वी कैन स्टॉप इन बिटवीन, एग्जैक्ट नहीं होता है राग के हिसाब से, घराने के हिसाब से। सो ये जो 21 श्रुतिज हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन नारद की माहती। जब मैंने और रिसर्च की थोड़ी सी, देन आई केम अपॉन जिसे कहते हैं मट्टकोखिल वीणा, सेम प्रॉपर्टीज कि उसको पर्कशन की तरह भी बजा सकते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी बजा सकते हैं, जब बजता है तो स्वरमंडल की तरह बजता है, गाने को अकंपनी करता है, ना कि गाने के साथ कंपीट करता है। सो वी डिसाइडेड कि फॉर द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट एंड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैंने जाकर सीखा, तुम भी थोड़े क्यूरियस होकर जाकर ढूंढो कि हमने ये क्यों किया, तो इसके लिए इंक्लूड किया, माहती को मट्टकोकिल के साथ इक्विवेलेंट मानकर ये किया।
0: आदर्श, आपने बहुत सारे नाटकों में भाग लिया, बहुत से नाटकों को डायरेक्ट किया, इसमें आपने क्या अलग या फिर क्या नया डाला?
2: जो सबसे अलग था पहले मेरे लिए, जब हमने कुसुम पर बात किया, मैंने कहा ओके कुसुम की बात करते हैं, फिर तरुण आए, भाई आए, तो किशोर से भी हम बात कर रहे थे टीम के सदस्यों, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ मेरे पास बहुत कपड़े हैं जो विष्णु के लिए बहुत झगमग कपड़े

मिलेंगे, देवताओं के लिए बहुत कपड़े मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सब जो है हम दादी हैं, नो, ये कुछ हम नया करते हैं, जो लोग देखते आ रहे हैं, लेट्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो मैंने उसके बारे में सोचा, फिर सोचा हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं कुछ नया शुरू करते हैं। फिर आपकी वेशभूषा जो थी वो भी अलग थी, साधा

0: जो हम दिखाते हैं, जैसे जो सुदर्शन चक्र भी है, नॉट लाइक द मुड जो ट्रेडिशनल वन, समथिंग न्यू. आप जो मुकुट पहनते हैं, हमने पगड़ी पहनाया, और जो देवतागण भी थे, जो अप्सराएं भी थी,
1: और उसमें भी एक ग्रामर था, पगड़ी में भी एक ग्रामर था. द हायर द स्टेटस ऑफ लाइक द गॉड, द बिगर द पगड़ी. जैसे कि आज भी होता है कुछ प्रांतों में, इंडिया के कुछ प्रांतों में. सो वी ट्राई टू टेक द सेम ग्रामर, द सेम एसेंस, एंड ट्राई टू अप्लाई इट, टू अप्लाई इट हियर.
2: समय को मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न है, तो समय आ गया उस प्रश्न को पूछने के लिए. इस प्रश्न की शुरुआत में इस तरह से कहना चाहूँगा, देखिए कोई प्रोजेक्ट हो, बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे मोड आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो ड्रॉप कर लेते हैं, छोड़ ही देते हैं. कई सर्कमस्टांसेस में, कई एग्जाम्पल्स हमको दिखाई देते, कई लोग कर लेते हैं. निखिल जी आपके सामने और आदर जी आपके सामने एक चैलेंज था जहाँ पर आपको एक मुख्य पात्र को बदलना था. तीन दिन पहले आपने अपने मेन कैरेक्टर नारद को बदला. तो वैसे उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे, क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, बल्कि इस चैलेंज को आपने किस तरह से ओवरकम किया, इसके बारे में आपसे.
1: ये जैसे कहते हैं ना थिएटर की लैंग्वेज में, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन.
0: यस,
1: ये हमारे लिए डिवाइन इंटरवेंशन था.
0: उस दिन हम फोन पर बात कर रहे थे.
1: To be honest, हमारे पास दो नारद लॉक थे. हाँ, टू ऑप्शंस थे कि शो से तीन दिन पहले हम ट्राई करने वाले हैं कि कौन सा नारद अच्छा होगा,
0: क्योंकि हमने बात कर दिया था, हम प्लान बी नहीं रख रहे हैं, सी डी ई रखेंगे अभी.
1: तो वी कम इन एंड भाई बोल सकते हैं अमित, अमित के साथ.
0: अमित, हाँ, मैंने सुझाव दिया था, एक कलाकार है अमित जो कामदेव का किरदार निभा रहा था. मैंने उसे कहा, अमित क्या तुम मेरे लिए नारद कर सकोगे, पर ये कंफर्म नहीं है, हम एक रेनफ्रू देखेंगे. तो उस दिन उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं देखता हूँ, अगर समय दे पाऊँगा मैं छुट्टी ले लूँगा इस शो के एक दिन पहले, तुम मुझे पूरा दिन सिर्फ नाटक के बारे में ये ब्रीफिंग करवा दो. मैंने कहा ओके. उसने कहा मैं अपनी पत्नी को ला सकता हूँ. मैंने कहा हाँ ला दो, मैं उसको जानता हूँ. तो जब हम रात को उसके साथ काम कर रहे थे, मैं आई वोंट से ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज गुड, बट क्योंकि समय की पाबंदी थी, क्योंकि शो दो दिन में था, तो तब उस समय जो उसकी पत्नी है जनिता, उसको कुछ मूव सिखा रही थी. वो कह रही थी ये करो वो करो, और जनिता खुद एक वो डांस करती हैं,
2: क्लासिकल डांस
0: करती हैं, और वो नाटक भी पहले कर चुकी हैं. तो शी हैज अ नोशन ऑफ दैट. तो मैं निखिल भाई के पास गया, मैंने कहा भाई देखो, डू यू थिंक कैन वी यूज अ गर्ल फॉर नारद. वो कुछ हेजिटेंट थे. उसने कहा नहीं, देखो अगर मैं अमित के साथ, पर उसने कहा तुम देखो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ. फिर मैं जनिता के पास गया, मैंने कहा जनिता मैं तुमको जानता हूँ, तुम ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हो. आई एम नॉट सेइंग योर हस्बैंड इज नॉट डूइंग वेल, ही इज डूइंग इट गुड, बट यू कैन डू इट परफेक्ट, आई हैव ट्रस्ट, आई नो यू कैन डू इट, माई हार्ट इज सेइंग यू कैन डू इट, कैन यू डू इट फॉर अस. फिर उसने सोचा, फिर उसने कहा आई एम नॉट श्योर, बट व्हाट डू यू थिंक. मैंने कहा तुम सिर्फ जो मैं डायरेक्शन दूंगा उसके बारे में तुम वो ही सुनो, मैं कहानी सुना दूंगा, तुम बस उसके हिसाब से, लाइक जो पानी बहता है ना उसके हिसाब से फ्लो करना. उसने कहा ओके. फिर आई थिंक दिस गर्ल, हैट्स ऑफ टू हर, शी हैज गिवन अस द टू डेज. लाइक रात को हम रिहर्सल के बाद 2 बजे शायद घर लौटे, तो उस समय उसने अपने कपड़े AI से जनरेट किए, उसके लुक ये उसने भेजा मुझको, क्या ये अच्छा होगा. उसने फिर रिसर्च किया, मैंने कहा स्क्रिप्ट पर लो, मैंने स्क्रिप्ट भेजा, उसने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया. देन द सेकंड डे व्हेन शी केम फॉर द रोल, यू वोंट बिलीव, शी वाज सिक, फीवर था उसको, बट व्हाट, I don't know, it's a divine. उसने जो काम किया है, लोगों की आंखों में पानी आ गया था.
2: वाकई नारायण नारायण टाइटल था और नारायण का आशीर्वाद था इस प्रोजेक्ट में, और बहुत ही सुंदर रूप से आया. बहुत लोगों ने इसकी रिप्ले की डिमांड की. तो एक प्रश्न के साथ अब समय भी समाप्त होने को आ रहा है. तो इसका वीडियो हम नहीं देख पा रहेंगे, बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया में है, आप इसको देख सकते हैं।

0: निखिल जी, इसका रिप्ले होगा या फिर इसका पार्ट टू होने वाला या फिर कुछ आने वाला है?
1: एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर काम चल रहा है, एक दूसरे स्टोरी पर काम चल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी इसको डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, बिकॉज इन जैसे कह रहे हैं ना, उस कथावाचकों के एसेंस में इट हैज टू बी देयर. तुम वहां पर होगे, जो एनर्जी तुम लाते हो उसी एनर्जी से हम काम करेंगे और उसी हिसाब से आपको वो कहानी प्रस्तुत करेंगे. वो डिजिटल स्फीयर में खो जाता है थोड़ा सा.
0: जहाँ जब से नाटक के कार्यक्रम में हम प्रेजेंट करते हैं, जब से नाटक में भाग लेते हैं, यहाँ पे मंच पर बहुत सारे कलाकारों का आना हुआ, बहुत सारे वयस्क कलाकारों का आना हुआ, एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, उन लोगों ने इतिहास बताया हमको. एक तो हमारे देश में बहुत सारे दिग्गज कलाकारों ने इतिहास रचा, आप लोगों ने इतिहास रचा, आप लोगों ने इतिहास रचा. 63 आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज, इंक्लूडिंग ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज ऑल्सो, सब कुछ लाइव था और 2 hours के ऊपर प्रोग्राम. तो हैट्स ऑफ टू यू.
2: थैंक यू.
0: तो आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए. मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में, ये मैं दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी नाटक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा अपने कार्यक्रम में ये प्रश्न मैं ज़रूर पूछता हूँ कि क्या एक कलाकार कैन ही अर्न ए लिविंग ओनली थ्रू एक्टिंग? तो आपने इसका मतलब इसका जवाब दे दिया, कहीं ना कहीं अर्न हो सकता है. आदर जी, आप बहुत पहले से नाटक में भाग लेते हैं, तो नाटक में परिवर्तन, कैन एन आर्टिस्ट अर्न ए लिविंग?
2: दूसरों का पता नहीं, बट अगर आप में वो जैसे डिटर्मिनेशन है, आई थिंक यू कैन अर्न, बट अभी के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है. पर जो हम ट्रेडिशनल नाटक करते हैं, रितेश जी आपने देखा होगा, दिस प्ले वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. इफ यू वॉन्ट सच अ प्रोडक्शन, इट कॉस्ट ए लॉट, बट मे बी वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन टेक्निकल्स. जैसे आपने स्क्रीन पर वो इफेक्ट्स जो देखे, लाइट्स जो देखे, मे बी ऑन ए प्रोफेशनल थिएटर वी वॉन्ट बी एबल टू डू सच लाइटिंग. बिकॉज जो मैं चाहता था, जब आप जो लॉस में जब वो क्लिक होता है इसे, सब लाइट्स आप पर आए, आई थिंक आई वॉज एबल टू डू इट इन सच अ टाइप ऑफ प्ले, लाइक अ कंसर्ट प्ले.
1: और आपको बता दूं कि जो लाइट्स हमने यूज किए थे वो यहाँ पर यूज होते नहीं है
2: जी.
1: वी हैड टू इंपोर्ट देम फ्रॉम रियूनियन. मोस्ट ऑफ द लाइटिंग इक्विपमेंट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रियूनियन.
0: ओके.
2: क्योंकि ये सुविधा थी, सो आई कुड यूज दैट इन द प्ले. सो वी हैव मेनी थिंग्स. इफ यू वांट सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, मुझे मुझे लगता है भाई निखिल ने ये चिंगारी चला दी है. आई थिंक फॉर द upcoming years, maybe we can earn a good living with this.
0: नारायणा नारायणा कंसर्ट जो है, इसमें बहुत कुछ नया था, प्रोजेक्ट ही नया था, स्क्रिप्ट नई थी और कलाकार सब आए हैं एक नए रूप में और नए चैलेंजेस आए, इक्विपमेंट्स नए आए, सब कुछ नया था इसमें. और कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गई है. निखिल, कुछ कहना चाहेंगे अंत में?
1: अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के आर्टिस्ट, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो यहाँ फ्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से बहुत तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत जगहों के इन्फ्लुएंसेस हैं. सो जो यहाँ बन सकता है वो विश्व में कहीं नहीं बन सकता. ये हम कलाकार समझ चुके हैं, हमारे ऑडियंस को समझना बाकी है.
0: मैं वहाँ था तो एक सज्जन से मुलाकात हुई, उनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए शब्द मैं दोहराना चाहूँगा क्योंकि हम सब मॉरिशन आर्टिस्ट है, जो भी मॉरिशन हमको सुन रहे हैं, सबको हैं सबको. वैसे ऐसे का ऐसे ऐसे टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हम इम्पोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को यहाँ पे आकर प्ले करने के लिए. यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% लोकल आर्टिस्ट, सब कुछ लोकल था. तो मतलब लोकल आर्टिस्ट में भी वो क्षमता है. आदर्श, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: मुझे लगता है सब कलाकार एक ही लक्ष्य के लिए आगे हैं कि वी वांट टू प्रमोट द आर्ट. आई थिंक इट्स टाइम दैट, एंड आई वांट टू थैंक बाय निखिल पर्सनली, एवरीवन कीप देयर ईगो असाइड एंड मेक कोलैबोरेशन. उन्होंने म्यूजिशियन, डांसर्स, थिएटर को लेकर विमिज ही

0: I mean, it's such a beautiful production. So why not others follow the same? और मेरे लिए आप लोग जो बैठ रहे हैं अपने घर पर, please support local artists. We are making things for you guys. So we want you to come and enjoy the show.
1: बहुत ही सुंदर है ये मंच आप लोगों के, आप जैसे कलाकारों के लिए है. आप लोग आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और देश में जो नाटक की जो दुनिया है उसको और बड़ा बनाइए और विस्तृत बनाइए. निखिल आप आए, आदर्श आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
1: चलिए दर्शकगण, आप लोगों ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाया, तो ज़रूर आप भी कुछ करना चाहते हैं नाटक की दुनिया के लिए, तो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता को आप दांव पे लगाइएगा. डेयर टू टेक रिस्क और मॉरिशस में, दुनिया में आप माइलस्टोन्स क्रिएट करते रहिएगा. हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा. नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला.

0: down to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी. आपको नमस्कार.
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. एक ही वीजा से साधक की कई देशों की यात्रा कर सकते हैं. साधक टूरिज्म यूनी वीजा का ये सिद्धांत है. ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक. इस साल डरबन दक्षिण अफ्रीका में लगी उस साधक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर और इस मुद्दे पर बातचीत चली.

0: इस शिखर बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश रावल भी मौजूद अभी के लिए पांच देश इस पायलट परियोजना में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें दक्षिण अफ्रीका नामीबिया जिम्बाब्वे अंगोला और मोजाम्बिक शामिल है। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवासन के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के संबंध में मॉरिशस नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता है। नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उतरी भयानक बाढ़ में कुछ मिनट के अंतराल में ही कई लोग मारे गए और कई लापता हुए। फिर भी खतरों को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नियोक एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकती है। यहां तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। नियोक के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग संबंध मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। संविधान में सुधार को लेकर मॉरिशस में एक नया चरण शुरू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की ओर से जनता को लिखित तरीके से ईमेल के जरिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अगले 28 अक्टूबर तक पोर्टलिस दफ्तर में भी ये प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। आयोग की अध्यक्षता पूर्व जज विनोद पुलेल कर रही हैं। इसमें कई कार्यदल भी कायम किए गए हैं ताकि अलग अलग विषयों पर गहन तरीके से कार्य हो सके। विदेश समाचारों में टिबेट में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे। भूकंप के कारण लोगों में दहशत है, हालांकि खबर लिखे जाने पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। बिस्वा लेन प्लेनमायो में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वा लेन प्लेनमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:11 AM। मौसम प्रीदम रिवे दिसंगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री शनमुगम ब्रिजित जो नादन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री मै सबिद सबदिवैन ब्रिजित के घर मौसम प्रीदम रिवे दिसंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

आप सभी को नमस्कार और इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमारी टीम में है शिव उरुसा और रितेश महाबीर के निर्देशन में ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी घरों का रोज़मर्रा का हिस्सा है। पंखा, फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयरकन, हीटर, एक्सटेंशन बोर्ड और न जाने कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम उन्हें खरीदते समय अक्सर कीमत, ब्रांड और अपीयरेंस देखते हैं, लेकिन क्या हम ये भी देखते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम अपने घर में ला रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं? वो निर्धारित स्टैंड

0: डॉट्स और रेगुलेशंस को पूरा करता है या नहीं, और अगर रेगुलेशंस को पूरा करता है ये नहीं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करने जा रहे हैं, और अगर अप्लायंस ख़राब निकल जाए तो उपभोक्ता यानी कि ग्राहक जो है वो क्या करें, कंज्यूमर के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। तो इन सारे सवालों पर विस्तार चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्री सूरज लाल बिहारी जी, जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर हैं, तो वो बताएंगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के संबंध में लागू क्या रेगुलेशंस हैं। इसी पर ये प्रोग्राम जारी है। तो नमस्कार,
1: नमस्कार
0: सूरज जी, और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रोग्राम में आप बता रहे हैं। तो पहले पहल हम यही खुजब जाने की कि एगो व्यक्ति जो है सबसे पहला जब वो एगो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जाला, ओकर से आगे कौन सी ओके ध्यान में चाहे रखे के?
1: देखबा कुछ खरीदारी करे से पहले हमनी के चाहिए जान जाए कि कौन चीज जाते से खरीदे, जो आवश्यक सामान बा यानी कि कुछ चीज इलेक्ट्रिक जब से खरीदे करे ना, तो के चेके कर जब से अगते से हमनी के जो इस्तेमाल करे बा, मैंने जो हमने के एगो फ्रिजर किने के चाहिए तो हमने के एगो प्लस स्वाजिया कर दे के चाहिए, कहीं दालब जा कितना साइज के चाहिए ले के कितना लीट पर है हमने के रेफ्रिजरेटर जैसे, ये सब अपन घर ही अपन काम कर दे जा, सोच जाए निमन से सोच विचार करके, तब जइए जा अपन दुकान जहाँ पर ही सक बजा खरीदारी करे। अब दुकान में जब जइबा जा हमने के कौन चीज़ चाहिए पहला देखे के ओकर दाम देख, हमने के बीजे के हिसाब से हमने सोच जाइला जा कि हियाँ इतना पैसा होते करते हैं जा है सब खरीदारी करे के, तब हुआ जब जाप से ना तो देखे कि चाहे ओकर कैश प्राइस कितना बा पहला सकब जा कैश किने तो खरीदब जा, नहीं तो देखे के चाहे हमने के पुस के हिसाब से हमने के कितना बीजे बा सकब जा हर महीना कितना सकब जा चुकावे हो सक बजा देखे, यानी कि कोनो चीज खरीदारी करब जा हमने के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में तो मगाजे में ओकर हुआ पर जहाँ पर बेचाता ओकर कैश प्राइस डाली ओकर क्रेडिट प्राइस वो भी डाली कितना
0: खरीदी
1: में लेबर तक लेते पे करे के चाहिए, लेकिन हमने के चाहिए सोचे के चाहे कैश प्राइस में इतना कूते होता ओकर क्रेजी में कितना होता पैसा कितना कूते होता हमने के लॉजिक हुआ और कितना लेते भी पे करते हैं सर कितना महीना में सकब जाओ के चुका देवे, यानी कि खरीदारी करने से पहले हमने के बीजे ऐप होता बा सोचे के चाहिए कितना पैसा सकब जा वोते करे, नहीं तो क्रेजी वो भी नहीं अब से कितना में सकब जा पे हर महीना सकब जा खरीदारी करे, और वास्तव में देखेंगे दाम भरम आवश्यकता बा हमने के।
0: अच्छा, तो जब हमने एगो अप्लायंस इलेक्ट्रिक के खरीदारी करते हैं जा, तो हमने के कैसे पता चली कि ये लॉजिक सही बा?
1: हाँ, मैंने जाए देखा जाए जितना हमने के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉनिक गुज बा हमने के जैसे पंखा बोला तब या पंखा जिन बा हमने के अन्य कितना चीज बा हमने के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बा हमने के लालवा बा कानून जितना चीज बा हमने के सीधा नहीं आवेला हमने के बाजार में यानी कि हमने के बुटीक में हमने के मगाजे में नहीं जाए, हमने जा कर के परीक्षण कर ला जा ओकर टेस्ट कर ला जाला, यानी कि लॉचिकवा जब आवेला हमने के लादवान में हुआ पड़ी तो वहाँ से हमने क्लिक करके जाएला जा MSB MSB में एगो स्टैंडर्ड ब्यूरो यहाँ पर ही वो लोग अपन एगो टेस्ट करा जाला ओकर स्टैंडर्ड बा हमने के रिक्वायरमेंट्स मीट करी वहाँ पर ही सब पासे हो जाए टेस्ट, तब हमने रिलीज करिए जा हमने के दुकान में आए, यानी कि पंखा बा अन्य कितना कितना चीज बा हमने के जितना चीज सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बा तो ही हमने हमने के मार्केट सर्वेंस कही रह जा परीक्षण कही रह जा कौन लॉजिक में हमने के ज़्यादा तो सुन कंसुमातिया लोग के सुन कठिनाई होता कुछ चीज जड़ जाता कुछ गिर जाता तो हो सब के स्टैंडर्ड दाई ला जा, तो हो सब लॉजिक वाले करके हम निकले जाए ला जा हमने के MSB मोशन स्टैंडर्ड ब्यूरो वहाँ पर लोग अपन टेस्ट कही लन जा सकल जाए हमने के बाजार में आने नहीं तो हो जिसे हमने घुमा दे ला जा।
0: अच्छा,
1: ऐसे है लालवा बा इनके ऐसे
0: जैसे जानी ला जा बहुत इलेक्ट्रिक के अप्लायंस बा तो कौन कौन लॉजिक के चाहे ला प्रोटेक्शन के कंडीशन रिस्पेक्ट करेगी?
1: हाँ हवे जिन जिन लॉजिक ज़्यादा जिन इलेक्ट्रिक बा हमने के सेवी कही जैसे हमने के हेयर ड्रायर बा हमने के जिन सेवी कही रह जाए जिन जीएसटी हमने के कुरों में बा इलेक्ट्रॉनिक बा और सब आइटम जिन बा ना चेके प्रिकॉशन ले के चाहिए, यानी कि खरीदारी समय हमने के चेके के बोले के चाहिए टेस्टिंग कर जाए हमने के ओकर एक मैनुअल रहे ओकर तलाशों के भी कैसे करल जाए तो और कुओं कौन चिफाज कितना रही के चाहिए कौन पिन डाले के चाहिए कौन प्लेग में डाला जाला है सब संवाचे के चाहिए पहला, सेकेंड हमने के घर में हो सब सुविधा नहीं बा तो देखे के चाहिए हमने के

0: अक्टिफिक बना दे के चाहिए तब हम सब लॉजिक सब जा खरीदे नहीं तो खरीद ले बा, तब देख बा तोर लगे है सब सुविधा नहीं बा तो नहीं सब बच्चा से भी करे तो ये सब खरीदारी करे से पहले हमने कहीं से जांच पड़ताल कर ले के चाहिए कौन कुरो बा कहीं से सभी करा जाला ओकर मैनुअल फर निमन से तब सेवी करे के चाहिए। हमने क्योंकि जिम्मेदारी है खाली लालवा ने सब बोले खरीदारी समय देखे के चाहिए एगो फ्रेजिडिया करे थे जाओ कर नीचे नोफ्रॉस बा नहीं तो कर ग्लास ही बा तो पूछे के चाहिए नोफ्रॉस है कि नहीं है।
1: तो मान लो एक जना जाता फ्रेजिडिया खरीदे तो ओके कौन चीज चाहेला ध्यान में रखे के और किने के पहले कैसे पता चली को एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी कैसे वो पता चले।
0: हाँ, तो उकर जितना उकर बेचे होला तो कितना चीज तो बोलते रही हमने के चाहिए आपके अक्ते से कुछ समाज लेके चाहिए हमने के कामगार लोग के खरीद ले जा तो बोले पूछताछ कर लेके चाहिए तब जा कर के पूछिए हो जा सेल्समैन वा से है सब बा है सब उपशोवा बा नोफ्रस है कि ग्लासों करेला कि नहीं ग्लासों करेला कैसे कैसे है कितना कुरों से भी सेवी करेला कोई के टेलीकोनोमी होला बेचाता अब कोई के कुरों नॉर्मल रहेला है सब अपन काम कर ला सोच ले निमन से तब जा करके खरीदारी करे के
1: चाहिए
0: कितना में कितना कंसोमेशन हो हमने के सब समझे के चाहिए और हमने के मैनुअल भी बा रहे लाऊ में और उकर सेफ्टी भी बा पीछे देख बा कौन सी कितना डिस्टेंस में रखे के चाहिए उकर गाज देखे के चाहिए ढेर ठंडा गांव में रह तो देखे के चाहिए समझे के चाहिए हमार लगे जस्ती गर्म है हमने के लगे ठंडा है कितना तो पेगाचिया में रेगले करे के चाहिए ऐसा सोच पूछो निमन से तब हमने के खरीदारी करे
1: तो अभी देखा थे जा जोन फ्रीजर या कौन बातें वो इको मोड या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या तो इको प्रोग्रामिंग सेवी करेला तो कैसे जनबा कौन ला चाहेला सेवी करे के जैसी
0: हाँ ये हमने के बोलनी ना तब हमने के रेजियों के आधार पर है जब ठंडा मौसम जहाँ पर हो जास्ती ठंडा है तो कर तो पे गाचे पर ओकर हिसाब पर रेगले करे के चाहिए तो कुआं वो कमती रही ऐसे जैसे गर्म खोटी में रब जस्ती ठंडा खोजब तो कर देखे चाहिए कैसे ओकर ओकर एप्लीकेशन कैसे प्रिकॉशन ले के चाहिए और कैसे जहाँ तहाँ सब बराबर नहीं सक बस भी करे सब गाँव के सबके जहाँ पर रहत हो ना ओकर हिसाब से ओके ओके चाहिए हमने के इस्तेमाल करे के चाहिए।
1: अभी तो हमने के घर में कहे चाहे ला वो कुरान के जिफिल के नॉर्म रखे के वही खातिर
0: हाँ वही खातिर हमने के बाद से बे लोग अपने को बाय वो डिफरेंशियल डाले के चाहिए कुछ ऊँचो हो गल बा ओकते वो सोते हो जाला कुआं वो नहीं लगी हमने के सब लालवा बा हमने के सेबिक अपन दिखे अपन काम लेकिन हमने के जन बा लॉजिक जब खरीदार थे सब कितना ओपेराज में बाकर कुआं कितना जाता कितना सेवी होता तोहर कुआं कमती बाकर ओपेराज मौते करे के चाहिए ढेर खाली अप्लायंस किन दे ला जा तब फेंकते हो हमने के कुआं और जस्ती दमो पे कर बा कुआं बोल बा खाली एगो चीज़ के नहीं सा इतना कुआं बिजली पर मौते हो गल बा तो ये सब सोचे के चाहिए और ओपेराज के आधार पर न सकबा ओकर एक्न की सब एक ही समय से भी करबा तो कठिनाई हो जाला तो यही कारण सोच विचार करके अपन घर के हिसाब जितना सेबे के ओपेराज बा कितना बा और सब सोचा निमन से सवाच अपन जो निस्ताली करे होला जो नावत हवन उकर से भी पूछ कहाँ पर सकत डाले जिनमें कुछ कठिनाई नहीं हो लड़का लोग के प्रिकॉशन दे के चाहे बोले के चाहे तब अपन सोच विचार करके अपन खरीदारी करे के चाहिए।
1: तो आज की चर्चा हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उन्हें गवर्न करने वाले रेगुलेशंस पर चर्चा कर रही है। इस विषय से संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल हो 4028085 पर या आप कोई सलाह देना चाहते हैं बेझिझक 4028085 पर आप फ़ोन कर सकते हैं।

इस प्रोग्राम में दोबारा आप सबका स्वागत हम करते हैं। और जैसे कि पहले हमने बताया कि हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उन्हें गवर्न करने वाले रेगुलेशंस पर बात कर रहे हैं, और हमारी अतिथि

0: हैं श्री सूरज लाल बिहारी जी, जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर हैं। तो हमने देख लीजा कि जब एगो खरीदारी होला एगो मतलब एगो इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, तो कितना बात अभी सूरज जी बतैलन कि कौन कौन चीज चाहिए ध्यान में रखे की। तो ऐसे ही अगर एगो अपन घर बनेला तो कुरों के इंस्टालेशन के दौरान उकर कोंतिया के चाहेला वो मजे देखे के चाहेली।
1: जब बनाई ला घर ना तो से चाहे बोल दे के चाहे जब एप्लीकेशन कर जैसे कुरों के तो बोले के चाहे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रही फेयर पासे रही एयरकॉन डालब जा तब उकर हिसाब से वो लोग देवेलन जा कितना कुरों इस सब किन देर सब के कुरों उतना कैपेसिटी नहीं बा तो कठिनाई हो जाला सोते हो जाला हमेशा ये खातिर हमेशा अगते से प्रोविजन कर जाला। और अपन ला कुजिन में भी अपन इंस्टालेशन भी कौन सी ब्रेकर कहाँ पर कुछ डाले के वो लोग डला दे के चाहिए रेफ्रिजरेटर के एयरकॉन के सब प्रोविजन कर दे के चाहिए तब से कब्जा जाके खरीदारी करे जैसे अच्छा रही। और प्रिकॉशन हमने के कुरों के चीज है जर जाए नहीं हुआ काम करे चल गल हुआ कुछ हो जाए तो नहीं अच्छा बा हमने के
0: सकबा हमने के बोले एगो एयरकॉन जो नॉन इन्वर्टर है और ओरी इन्वर्टर भी है उसमें डिफरेंस कौन सी है?
1: डिफरेंस में हमने के इकोनॉमी पर है
0: इकोनॉमी
1: पर है जस्ती अभी के समय में सब चीज महंगा होता कुओं के अपने इतना ऑपेरा में हमने के पे कहीं ले जाए तो लेकिन ओकर दाम में डिफरेंस बा जो साधारण एयरकॉन बा वो इन्वर्टर नहीं बा वो जस्ती सस्ता रही जेकर जस्ती इकोनॉमी बा लॉन्ग टर्म में देखा जाला ना एगो चीज खरीद बस सस्ता के तो कर पे कर उतना कुरान अब जस्ती महंगा के नहीं होकर इन्वर्टर बाऊ में तो कर काम करते हुए तो जस्ती महंगा बा लेकिन लॉन्ग टर्म में जस्ती मुनाफा रही ग्राहक लोग के ही अपने के सलाह दे सोच विचार करके अपन पुस के हिसाब से लेकिन लॉन्ग टर्म सोचे के चाहिए बस कि कुरान तो हर महीना पे करे के चाहिए एक मत एक के कोई किन ले बा लेकिन कुरान हर महीना पे कर बा तो ही सोचे के चाहिए निमन से देखा जा।
0: तो श्रोता और दर्शक लोग को हम अगर आप आज की चर्चा से आपको कोई जानकारी मिली हो तो उसे अपने परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचाएं क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस की कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पहली सीरी है। अब मान लीजिए एगो अप्लायंस खराब निकला तो एगो ग्राहक के कौन चाहना करे के उनका
1: पहला हमने के चीज जाने के चाहिए कि जब खरीदारी समय खरीदत नहीं जा तो ये हमने के पूछे के चाहिए मैं गाँवी बा कि नहीं गाँवी बा ये सलाह देव जा कोनो चीज खरीदब जा खरीदब जा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने के ट्रेडर से हमने के जन बेचे वाला से समाचे के चाहिए और पूछा गाँवी बा बस कि हमने के कानून जो बा हमने के फेटरिंग एक्ट के आधार पर जो रेगुलेशन बा हमने के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डोमेस्टिक अप्लायंस है ये हमने के लालवा में डोमेस्टिक बोले बा डोमेस्टिक जो बा घरेलू के सामान के लालवा बा और हमने के लालवा अप्लीके होला जब गारंटी नहीं रही तो हमने के लालवा नहीं अप्लीके होला। इ कारण इस सलाह देवब जा कोनो चीज खरीदारी करेंगे तो उसमें हमने के चाहिए पूछे के चाहिए गारंटी बा
0: कि नहीं
1: बा और गारंटी भी बा तो कर क्लोज है कितना कुवेयर करेला कौन चीज कुवेयर करत है गारंटी में बोलब से गारंटी बा सब चीज नहीं कुवेयर होला एनो चीज को जब मिस यूज हो जा रहा कुछ जैसे पोताब ले वब जा एगो चीज पोताब कहते हो लिखो गारंटी में नहीं कुवेयर है इस सही जाने के क्लियर हमने के तब बोलब न हमने के पोताब गारंटी में बा गारंटी ई लिखो नहीं कुवेयर होता एवं प्रकार से कोनो चीज खरीदारी करब से न तर गारंटी बा हाँ बा कितना बरिस के एक बरिस दू बरिस बा कौन ची कुवेयर होता ये हमने के ग्राहक लोग के सलाह देवब जा उ लोग के चाहिए ये कौन सही बा पूछे के चाहिए खरीदारी करे से आगे जिम्मेदारी बा हमने के भी पूछ वो बेचे वाला तो बेचा था सकला नहीं सकल नहीं नहीं बोलक ऐसे ऐसे नहीं बा लेकिन हमने के भी एक कारण हमने के सब अवेयरनेस होता प्रोग्राम होता कि ग्राहक लोग के कोनो चीज खरीदारी करब से पहला गारंटी हो के चाहिए गारंटी यदि बा तब लालवा सब कब्जा अप्लीके करे कानून से कब्जा करे यानी कि पहला है ये गारंटी रही। अब मैंने जब कुछ खराबी हो गल बा लौचिकवा में तो वहाँ पर ही पहला हमने के हो गई लौचिकवा ले करके ना मैंने एगो छोटा चीज रही तो लेके जाए के चाहिए चाहे पर खरीद ले हैं जहाँ वहाँ पर जाके जाए के चाहिए लेके जा बोलबा ऐसे ऐसे हो गल बा वो अपने को कागज दे कि लेवत है सके ला वो मेजों में नहीं हुई कुछ मेजों में से

0: खरीद ली हुई वो अपन बेच ले वगैरह वो दे बा तो वो जा करके विदा करी पहला हमने के ई कुछ चीज खराबी रही तो हमने के कानून बा मॉरिशस में हमने के देश में कि दूसर तुरंत तुरा एगो नवा चीज नहीं मिली इकले हमने के लालवा मॉरिस के जो नो चीज खराबी हो गल बा कठिनाई हो गल बा उमें कुछ डिफेक्टिव हो गल बा तो जा करके त्रेदय लगे जहाँ पर खरीद ले ऐसा वहाँ पर जा करके छोड़े के चाहिए बोल के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गल बा अब वो लेकर के सकेला वही मेजों में रही तो रिपेयरिंग करी नहीं तो हमने के वो 10 दिन पहला देले है देवे के चाहिए कानून में बा न तुरंत नहीं दे नवा चीज नहीं बा हमने के हयब कंप्लेंट मेरा हमेशा बोल जाए तो एगो चीज हम नवा किन ले हैं अभी फिर हाली फिर से अभी हाली हल कर लिया जा 2 दिन नहीं होल बा खराब हो गल बा एगो नवा देज के नहीं बा लालवा पहला
1: दस दिन के अंदर
0: रिपेयरिंग में जाए वो पहला रिपेयरिंग में जाए यार देले है 10 दिन दे के चाहिए
1: जे रिपेयरिंग नहीं सकी था
0: हाँ नहीं हवे पहला 10 दिन दे और 10 दिन के अंतर्गत में ट्रेडवा के देवा है हमने के जो ग्राहक बा ओके बोले के चाहिए कौन सी हो गल बा और जे रिपेयरिंग हो गल 10 दिन में आकर के ले आना सब पर ले जाए पारे हो गल बा लेकिन अब 10 दिन में नहीं रिपेयरिंग होल बा होला जहाँ तहाँ अब जो नहोल बा ओके बोले के चाहिए कि नहीं सकते से रिपेयर करे अब जो बा 3 महीना के ओकर देले है फिर से अब 3 महीना में ओके चाहिए अपनी के हाँ अब रिप्लेसमेंट के मामला आए बस कि नहीं सकता बोली पीएस नहीं बा है नहीं बा लेकिन पीएसमो भी स्पेयर पार्ट जैसे है जो सर्विसिंग के पीएस है उतर दिल्ली अवेलेबल हो ही के चाहिए मागाजे में जो पीएस को मजा एगो चीज़ खराबी हो गल बा लेकिन ओकर मागाजे ओकर स्टोर में नहीं बा ओके चाहिए ऑर्डर करे के चाहिए बस को मान कर बा तो 3 महीना के अंतर्गत में ओके चाहिए बना देवे के चाहिए वो में भी नहीं बनता एगो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसे बोल जाकर बाजवे में खराबी बा तो अब तोरा नवा दे ऐसा ओकर तपस्वी करे के चाहिए पहला 10 दिन देवल जाला अब 3 महीना ओकर देले है नहीं रिपेयर हो तब ओ सकी नवा और फिर जो रिपेयर कर दे अब प्रॉब्लम फिर से हवे रिपीटे होता मेम प्रॉब्लम होता हमेशा हवे होता हवे सोफे होता कुछ चीज होता तब रिपीटिटिव बोल जाला ओ में भी सकी को दूसरा दे नहीं तो हमने सकब जाएगो सलाह दे ला जा पीतो छोटा पैसा डाल करके ना अपग्रेड कर दूसरे से जस्ती सकबा ला लेवे नहीं तो ओके सिमिलर कोनो चीज खराबी हो गल बना एगो फौजी बराबर जो कुछ किन ले ऐसा एगो सिमिलर बराबर दे की परेला इला कानून है लेकिन तुरंत थोड़ा नवा नहीं
1: मिली
0: सकेला 1 दिन से भी कर लो बह 2 दिन से भी हो लेकिन परी जाए के गो फॉर रिपेयर पहला रिपेयरिंग भी हो
1: सकेला कभी कभी ऐसे भी होला कि जो मैन्युफैक्चरर वो लोग सौंसे होकर जहाँ मतलब जहाँ से ले ले उस पे नहीं मिलल हुआ तो एक दूसरा लालवा रहे लाइन में
0: जे इस पे पावर तो नहीं मिला था माना जाए हमने के लोकल नहीं मिला था यहाँ ओकर देवो का 3 महीना है ओके चाहिए पोते करे के अब जे नहीं मिला था ओके सकी बोले के चाहिए कागज में ओके मिले के चाहिए कि जहाँ पर किनले ऐसा पोते कर ले वो आगे कर दिलवा वो दिलवा बनावे तब ओके परी दे के दूसरा चीज ने इसे बा लालवा लेकिन हम कि बढ़ सकती 3 महीना ओके मोगिस के बाजार में नहीं मिला था ओके चाहिए पोते करे के
1: तब ऑफिशियली सब चाहे ना
0: सब कागज पत्र में हो के चाहिए कुछ ने करता नहीं मन से अपन देश जिन के आधार ने कर ले बा रिस्पेक्ट ने कर ले बा तब हमने जा करके सकब जा कानून अप्लाई करी लेकिन पहला चीज घावची में हुई के चाहिए तब सकब जा कुछ अपन जो इतना लालवा बनी के डोमेस्टिक अप्लायंस रेगुलेशन जो 1989 के है तब हमने किस सकब जा
1: 1989 से
0: हाँ
1: अभी तक
0: अभी ले हवे में सभी होते हैं लेकिन आमों में हुई थी बात थोड़ा बहुत लेकिन सोचा जा 89 से इलालवा जब का मौके सेवेंस कर रहे जहाँ उस समय के देखा जाए मॉरिस में ज्यादा सबसे सुविधा होता के जाता लुगा दो अब नदी ने नहीं जा चाहिए अब मशीन हो गल बा अब तब बर्तन हो ला दो वाला मशीन बा सब तब मशीन हो जाता इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक होता तब सोचल गल बा एगो ला कानून बनावे के चाहिए जिनमें कंसोमाटेल के सकब्जा सुरक्षा हुई गते मोर्शस में जितना चीज होता ना गते गते हम निक जाए राजा सगरो सर्वेंस कई राजा कौन लॉजिक ज्यादा बेचाव होता कौन चीज कैसे होता तब उकर हिसाब से कानून के मौजूदा कानून के अपग्रेड कई राजा हमने के ऐसे जिनमें सकब्जा ग्राहक लोग के सुरक्षा पहुंचावे
1: अब मान लो इम्पोर्टेड ऑनलाइन अप्लायंसेस कोई खुचता खुचता किने के ई में कौन चीज कौन लाल बाबू ले ला और कौन चीज ध्यान

0: रखे के चाहिए।
1: हमेशा हमने बोल चाहिए ला जा ऑनलाइन शॉपिंग के नहीं मनाने सकब जा करे, लेकिन देख हिसाब से, लेकिन दबाजी ऑनलाइन के लालवा कानून अभी नहीं बा मुगिस में अभी काम होते बाबा इतने सुन कठिनाई होता हमने के बस अनेक प्रकार से दूसर देश विदेश से कि नहीं बजा तो कैसे आप बिके करते हो काम होता अभी, लेकिन सकब जा खरीदारी करे मना नहीं बा, लेकिन वो मैं अभी होकर गाँव ची देख सकेला ऑनलाइन शॉपिंग के एगो प्लस बा एगो स्टोर हो यहाँ पर मोरिस में सकेला ऑनलाइन लोकल भी करते हैं जाने परदेशों के ऑनलाइन करते हैं जा तो, लेकिन हमने के एगो पास प्लस हो एगो ट्रेड पे मिसर्स हो जहाँ पर स्टोर कर ले बन जा ऐ सब रही सब पूछे के चाहिए मन से गाँव ची बा कि नहीं बा तब सकब जा पी कहीं करे, लेकिन मोरिस हमने के कानून बोल जला पूरे खरीदारी कर लें ऐसा गाँव ची हो आर एगो ट्रेड पे मिसर्स बा मैंने जो एगो चीज़ ऑनलाइन कर लें खरीदारी कर लें जा, लेकिन जब हमने लगे अपने के कॉम्प्लेंट करें खराबी हो गल बा लॉची कुआ में तो हम कहाँ जा सको जे ऑनलाइन में बुरी तो नहीं बकर घर से बेचता हूँ तो कठिनाई हो जाला
0: ये हमने की जिम्मेदारी होना चाहिए हमने के
1: इलेक्ट्रिक ले तो कुछ जन बा देखो अपन हाथ से छुआ देखो फर्क सिस्टित कर तो सामने में खेलता कि नहीं होता कैसे कर हिसाब सा हमने के एगो एगो एगो डेमो डेमोंस्ट्रेशन दे के चाहिए एगो डेमो देवल जाला तो जस्ते अच्छा रही।
0: तो एक और ब्रेक लेते हैं फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

हमारे साथ श्री सूरज लाल बिहारी जी हैं जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स हैं। और जैसे ही हमने बताया कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उन्हें गवर्न करने के

0: करने वाले रेगुलेशंस पर बात हमने करी रहता है ये कार्यक्रम में, और अभी कौन कौन प्रमुख लॉज और रेगुलेशन ये पर चर्चा श्री सूरज लाल बिहारी जी करलन। तो ये भी बात जननी की खरीदारी से पहला रिसीप्ट वो जो वारंटी ये सब का डॉक्यूमेंटरी सब संभाल के चाहे रखे के ये पर आप कुछ सकते
1: हो। मैं कोई चीज़ खरीदब दा कोई चीज़ मैं मिलिट्री के दुकान में जाप से हम सुपर मार्केट में जाएंगे ना तो हम के चाहिए अपने रिसीप रखे के चाहिए ये कौन चाहिए परचेस प्रूफ ऑफ परचेस है कहाँ पर खरीदारी कर लही से कौन चीज़ खरीदे से कितना दाम पे कर लही से हो के चाहिए जहाँ तक हवे में हमने के गाँव चीज आया देवल जा तब पीछे घुमेब तो देखब कि कितना कुछ चीज में गाँव चीज बा ऐसा पूछे के चाहिए हमने के हमेशा बोलते आवत हैं जा रेसी रखे के चाहिए अपन गाँव ची कौन ची क्लोज लिख ले बा में पढ़े के चाहिए हुआ सकेला उस समय वह नहीं मिले था हमने के लेकिन पूछे के चाहिए कौन ची गाँव ची कु व्यय होता बोले बोले के चाहिए हमने के हई को व्यय होता हई कु व्यय होता और मैंने जाए गाँव ची में बा अब हई जिन चीज कु व्यय होता वो नहीं करत हवन तब निकले के कॉम्प्लेट करब तब सकब जा लालवा एनफोर्स कानून जन बा एनफोर्स कर सकब जा करे तो ये कारण हमने के बजरा हमने के रेसी रखे के चाहिए और हमने के जन गाँवची बा और सब जानकारी खूब हमने के एगो प्लास निमन से रखे के चाहिए क्योंकि सब काम ही आई की चीज़ बा ये कागज पत्र रखे के चाहिए हमने के
0: और डिफेक्टिव प्रोडक्ट लौकी तो कितने नजरअंदाज नहीं चाहे करी के
1: हाँ जैसे कुछ खराबी हो गल बा तो गाँवची में बा काहे रखब घरे तो के जाके के बोले के चाहिए सकब जा सकते सेवी करे तो सेवी करत ही जा लेकिन कुछ चीज खराबी हो गल बा जाके बोले के चाहिए कोई कर्तव्य बा जाके बोलब तो वो अपन बनाई अपन सब चीज सकिन नामा वो दे दे जे कुछ बाद खराबी हो गल बा तो दे लेकिन हमें के रख नहीं घरे कुछ चीज गाँवची में बा काहे रखब बस एगो चीज पत एगो डिफेक्टिव हो गल बा सकते दूसर चीज खा ली तो नहीं अच्छा बा हमने के जाके के बोले के चाहिए लेकिन ई में का होला जहाँ तहाँ ट्रांसपोर्ट पिए है कि नहीं है ई बोलब कि है सब नहीं बोले लन जा कि चाहे पिए करके ट्रांसपोर्ट इतना ए तो वर्षों में पहला फीस इतना मोटो बा ये सब गारंटी में लिखे के चाहिए अगते से कि ट्रांसपोर्ट कोई बोले नहीं हिडन कॉस्ट बा है सब कुछ ये सब नहीं है अगते से हमने के भी कर्तव्य बा हमने के एक जिम्मेदारी है हमने के ग्राहक लोग के पूछे के चाहे कुछ चीज खराबी हो जाए तो ट्रांसपोर्ट के पे करी हमरा चाहे पे करे के कि तू और तू अनब तो मैं ट्रांसपोर्ट फरिया दे के चाहिए निमन से यानी कि तू पे करब तो तू पे करे के चाहे तू एक्सेप्ट हो तो वह पे करे के तो पे करिए नहीं तो जब ऐसे वोशो होला कुछ खराबी नहीं हो बा लेकिन कुछ तो आकर के देखे छिके करे के कोई बा अपन देखे ना कुछ मतलब चिकवा छिके कर ला कुछ का होता इसे तो कुछ ऐसे वोश वहाँ पे आब कि नहीं पे आब ये सब समाचे के चाहिए तब ऐसे न अगते से हमारा नहीं बोल जा कि सब पे कर मन डाको नहीं है तो क्लोजवा में बा कि पे करे के बा ट्रांसपोर्ट तोहर चाहिए आने के कि वो लोग आनियन से लेकिन ट्रांसपोर्ट आके फीस वा दे के चाहिए तब सकें जावे है सब जाके के पे करब तब वो लोग आनियन से है सब सब क्लोजवा में निकल गला पीछे ये कारण हमने के जिम्मेदारी बा समाच पूछ तब हमने के गाँव ची के सकब जा कुछ सीए करे से आगे भी मैंने जे हूँ वहाँ पर खरीदारी करते हैं सर गाँव ची सीए करते सीए करावे लन जा कि यहाँ पर सीए कर यहाँ सीए कर हम सीए हाली हाली कर खाली लौची के ध्यान में बात कब जाप सा लेके जाप सा घरे तो हमने के सोचे के चाहिए नहीं मैं से कहा सीए करते हैं जा
0: पूछो
1: कौन ची सीए कर ऑची में बात तब सीए कर कुछ चीज नहीं पूछ ले जा सीए कर दे सर वहाँ लिखाल बात पे करे के चाहिए तब बोल हमने के कुछ अगते से नहीं बोल रहे बन जा तो सीए कर दे नहीं जा
0: और के जब बोला थी 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग एगो टूटल रही एगो जो ठीक नहीं बा खराब बाते वो 10 दिन बोला आने के जे मान ला ग्राहक वा के 10 दिन वा में नहीं मिलल तो ओके चाहे कंप्लेंट करे के
1: मान ना जाए हमने के छोड़ ले आज छोड़ ले जा 10 दिन दे के चाहे
0: चाहे नहीं
1: 10 दिन वा में हमने के लगे कॉम्पेट सकब करे मना नहीं बा लेकिन जा करके पूछ नहीं तो टेलीफोने कर नहीं तो देख का होता हमारे लॉची के 10 दिन हो गल बा तो के कर्तव्य बा
0: बिल्कुल
1: हमने के ट्रेडर के सवाचे के चाहिए नहीं जाने लगे छिड़ी तो यहाँ हो गल बा लेकिन एक दिन में मिल जाता तो कम होता होला समझे के चाहिए तो हमने के 10 दिन में से मैं ओके चाहिए बोले के चाहिए हमने के नहीं ओकरे चाहिए सुने करके बोले के तो होता हमने के ऐसे ऐसे हो गल बा लेकिन थोड़ा काल आइए 2-3 दिन में परसों आइए अपन कम अपन अपन चीज़ देखे जाइए घरे

0: बनगलबा अब जब बनगलबीबा हमें के खाली उठा करके नहीं आना पूछ कौन चीज होल बा उमे एगो कागज देब कौन चीज को प्लास्टिक लेब कुछ पीस ने छबा कौन चीज सौजे होल बा एगो टेक्निकल अप्रोच से बोल जा पूछ रख अपन कागज पत्र बस ये फिर से जे जी एगो चीज श्वेते नहीं करते हैं जा एगो चीज होवे में होवे चीज वा खराबी
1: हो फिर से खराब हो जाए
0: निमन पीस नहीं डाले हुई निमन से है सब समाचे के चाहिए तब जब कुछ नहीं फरियाता निमन से थोड़ा नई सुविधा होता नहीं एक्सेप्ट होता तब हम निकल के कॉम्प्लेट कर लेकिन पूछे के चाहिए पहला जाकर के कोई निकाशों ब्याह पोता हमने के खूब बातचीत कर अब खींच करके जब करी तो कम नहीं होला भाव से बातचीत कर हमने के रिलेशन हो के चाहिए हमने के त्रेद और ग्राहक से बातचीत करे के चाहिए तब कम निमन से हो लेकिन कानून बा हमने के ग्राहक के सुरक्षा पहुँचावे के जैसे फॉलो कर नहीं जा 10 दिन 3 महीना रिपीटेटिव होता ने तो सेकेंड जब बदले को नवा चीज दिए
1: और अभी देखी ला जाए इंडक्शन कुकर और प्लग का सुफोंट रहेला कोनो अंतर बाई में इंडक्शन कुकर रहेला
0: हाँ नहीं नहीं तो ऐसा अभी अभी के हिसाब के आधार पर कुरान के भी चीज है कोई गैस की सेवी कहले जा अब गज वो भितरे ने डाले हो दियो डाल और तो कुरान के हिसाब से जितना कोर कुरान पे रा सकते से प्रोविजन कर ले ब अगर गो कुक ब्रेकर रहे ला हुआ पर स्पेशल डाले के चाहिए अब बोल बन नहीं डाल अब सब मिस सेवी कर दे अब से नहीं है सब में कंसेशन नहीं है इलेक्ट्रिक के चीज है हमने के सकब जा स्वीव कर और जाई जाने के बारे के सब सीखे के चाहिए निमन से अगर मैनुअल इंस्ट्रक्शन बा पूछ नहीं तो बताइए जा कैसे कैसे सेवी करे के चाहिए एक दिन खोल छोड़ दे से चल गई से दूसरे पास जरती बा जर गल बला पा गई तो ऐसे सोचिए कि चाहिए नहीं मन से जब कुरान के चीज़ करे दें जैसा प्रिकॉशन ले के चाहिए अपन कुरान के कितना पावर हो के चाहिए तब सकब जा सेवी करे नहीं तो हमेशा सेवी कर दिया होगा आधा आधा पकते बा सोते हो जाता कुरान तो सोचे के चाहिए नहीं मन से तब अपन चीज गिने के चाहिए
1: तो अभी आपके यूनिट में ऐसा ऐसा ऐसे कंप्लेंट शिकायत होला
0: हमने ग्राहक हमने के जब खरीद ले जा पहला ही प्रकार के जैसे बोलनी तबिया ना कि जैसे खराबी हो गल लौचिकवा में कुछ जैसे नवा चीज मिली तो नहीं है सलाह बोलती आवत है जा हमने के कानून बा कोनो चीज खराब खराबी हो गल हो ना रिपेरेशन भी जाए करे के वो कौन जब रिपेरेशन जता करे वो गुतेस करता सब आरे कुछ अर जस्ती नामा हो गया दुबले हो जाता बस ये सब चेके करके तब देवता तुहरा जब एक पेड़ धावची में बा तो कर जा करके छोड़बा वो बनाई और देवे से आगे उगर तेज करियो ओकरो ने अच्छा लगी हमेशा तो इबा कर लगे तो कर सब खाए तो इन पीस खराबी बा नहीं सब के निरीक्षण कर ले सब के चेके कर दे एगो डबल चेक करी जब मैं फिर से नहीं आईबा ओकर कर्तव्य बा निमन चीज दे और तू हमने के सेवी करे के चाहिए जब मैं फिर से नहीं जाई बजा तो कौन कहे जब दो एक दो दिन सेवी होल बा खराब हो गल बा तो फिर से चेक करी निमन से बस ये ओकर गुडविल हो जे बा हो जब बेचे होला रेपिटेशन हो हमेशा तू बोल बा नहीं हो चीज के लिए दो दिन खराब हो गल बा तो कोई नहीं जाए खरीदारी करे एक आदमी भर सब उ लोग अपन जेफो करिय जा बना दियन सा निमन से और चेके कर दियन सा तब तोरा दो चिकवा दियन सा लेकिन हम लोग के भी अब जब लेवत हैं जा चेके कर मिटलियन आमा स्वाद्याल कैसे बा होता निमन से सुफे होता है सोच का काम कुछ चीज सैटिस्फाई ब तब सीए करिय तब लेके आइए अपन घर कोई के लिए हाँ और कोई के लिए के जाए के चाहिए जे अकेले हो बुजुर्ग लोग के कठिनाई होता लेके जाए के कोई के साथ में ले जाए के चाहिए समझे होला बस कि हमने के बेचे होला वो तो दे दे फिर पागे पा ले तो कैसे लेके जा सच्चे के कर आगे ओकर कमवा होता जो चीज खराब पीस बा सौजे होल बा कागज मांग कौन चीज कर ले बा तब हमने के लिए
1: और शिकायत दर्ज करबा तक कौन निमेरो
0: हाँ बराबर हमने के निमेरो जन बा
1: N85
0: हॉटलाइन है और हमने के खरीदारी करे से पहले भी सब जब सुने कर कुछ सलाम मशवरा बा कुछ बा कुछ जाते से खरीदारी के कौन ची हुई के चाहिए कौन ची देखे के चाहिए सकब जा बोले और हमने के निमेरो नॉर्मल बा 460-2500 वो मैं भी सुने कर हमने के कुछ बा लेकिन अपन रिसी रखे के चाहिए रेसी और जैसे जहाँ पर कुछ निमोरो रहेला जैसे अगर जॉब नंबर कुछ निमोरो अकाउंट नंबर रहेला वो सब रखे के चाहिए बढ़िया से त तब कुछ शिकायत सब करे तब सब निमोवा दे के चाहिए वो फांसी करिए दुशवा खोजे के ना कारण हमने के सब कागज पत्र अच्छा से रखे के
1: जैसे बोलस पा वारंटी कागजात सब डॉक्यूमेंट संभाल के चाहे ना रखे
0: के चाहिए। अरे वो चीज बिया पौधा में हमने के जब लिवरे

0: गेजों होता ये अमी के बहुत अच्छा है भर सक लिए गेजों जिन बात दिन में ले के चाहिए
1: रात
0: के लिए बो चीज कुलिया ले ले बा, रात के लाली में बरता जब दिन देखा तो दूसर कुलिया हो गल ये सब देखे के चाहे भर सक दिन में ल साँझ के एक्सेप्ट हो देख कोई बात नहीं बने बस मना नहीं करते हैं जा लेकिन देख अपन जिम्मेदारी ले के चाहिए मन से।

0: हो का ही से लीला सके तो सीए कर दे ले बा कोई नई बात घरे नहीं आव है दिन आव पी तू मना कर दे लिवरेजो लिवरेजो ले अब बुलबन नहीं हो लौचिकवा नहीं है तो करा हो जाला बस एगो वहाँ पर एगो सीए का जाए डिलीवरी गुड्स इन गुड कंडीशन सब अच्छा बा तब ले ले कारण है सब सीए करे से आगे देख हवी लौचिकवा है निमन से ताले हो गर पाए डेमोन्स्ट्रेशन मोटे कर लन जा निमन से हाँ बिया बो तब सीए करिए कुछ खराबी होगा बने सीए कर विदा कर ले
1: वही दिन में जैसी अच्छा और आकर के मोटे हुए कर बता सब बच्चे के करियो कर
0: कैसे मोटे होता हो लकड़िया के कुछ बा कुछ गुजवा कैसे बा बर के होता बर ता निमन से कोई का कर बरे के चाहत नहीं बर ता दूसरा कुले बर ता ये सब बोल दे के चाहिए एक्सेप्ट हो इबत तब सीए करिए और हम के भर सक लिवरेजो भी हम के बेचे उला के वो देले है वो कह रेजू में कोई दे दे के चाहिए 15 दिन लालवा हां अब सकेला
1: जब जब किंबा तो मुकद्दस
0: देर 15 दिन में चाहिए दे दे के चाहिए पर तू पे कर दे ले दे के चाहिए लेकिन जब तब जहाँ तहाँ हमने के फेस्टिव के मौसम रहेला हमने के क्रिसमस होता बनाने होता तो सुन देरी हो जाला समझे के चाहिए लेकिन फिर भी ज्यादा देर नहीं कोई तो पे कर ले बाद दो तीन महीना अब बातों आवता है तो एक्सेप्ट हो तब ले ले हो बता नहीं बातों दूसर कोगो आई तब तो मिली तुम्हारा लिवरेजो तब बोल बना एक पाफे नई हम लीले बताई तब अब हम लगे कॉम्प्लेंट करे तो तू एक्सेप्ट हो ही है ना कि दो तीन महीना के बाद में देव पोते होता बात हो तो रेता हो बा समझे के चाहिए लेकिन भर सक लिवरेजो के भी देले है हमने के समझे के चाहिए सुने कर जो चीज न फल लिवरेजो के कहा नहीं रहा तो कल आवत है कुछ चीज हो जाला लेकिन समझे के चाहिए लेकिन दे मिले के चाहिए पे कर देने से लॉजिक वहाँ मिले के चाहिए
1: तो हम यही आशा कर रहे थे कि जितना कोई हमने के देखा था और सुना था वो लोग मतलब ये सब बात जो था वो ध्यान में रखी और वैसे उतना समय तो नहीं लगल बा हम आपसे ये पूछब जा जे मान न कोई कोई खरीदारी खोजे तो करे के कौन कौन तीन मतलब मुख्य बात वो लोग के बोल बा कौन ची
0: विशेष करके हमने के विषय बा इलेक्ट्रिक गुड्स पहले हमने के रिसी दे के चाहिए हमने के रिसी ले के चाहिए मांगे के चाहिए रिसी हमने के बनने के ले के चाहिए कागज का रिसी इंपोर्टेंट बा जो सा गारंटी दे के चाहिए और हमने के पैसा पोस्ट के हिसाब से दाम अपन बिजे के हिसाब से खरीदारी करे के चाहिए है तीन गो चीज वाय पोतों बा हमने के रिसी दाम देखो निमन से और गारंटी बा कौन चीज कुवे होता गारंटी में अपन देखा तो वह हिसाब बा जहाँ पर अपन प्लास बने ले वह फिट हो जाए तब खरीदारी करी सर और कानून भी पोते से करब से सकब जा करी रेसी रही गारंटी बा पे दे गारंटी बा में कुछ खराबी होगा भाई कुछ कुछ नहीं होता हमने कहा कि अब सकब जा कानून एनफोर्स करे ये हमने के हो के चाहिए
1: तो आज की चर्चा हमने जाना कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना केवल ब्रांड और प्राइस का सवाल नहीं है इसके साथ सेफ्टी क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंसी वारंटी और कंज्यूमर राइट्स भी जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर श्री सूरज लाल बिहारी जी को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने अपना जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे उन लोगों को मतलब कौन बात ध्यान में रखे कि ये सब बुलन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साथ में शिव उरूसा और हमारे जो प्रोड्यूसर रितेश को फिर कभी मुलाकात होंगी नमस्कार और आदाब।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं रजनी जी, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक ही वीजा से सादिक के कई देशों की यात्रा मुमकिन। जी हां, सादिक टूरिज्म यूनि वीजा का ये सिद्धांत है। ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक। इस साल डरबन दक्षिण अफ्रीका में लगी उस सादिक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर बातचीत चली, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश रामपाल भी मौजूद रहे। अभी के लिए 5 देश इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक शामिल है। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवासन के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के संबंध में मॉरिशस नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता, नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उतरी भयानक बाढ़ में कुछ मिनट्स के अंतराल में ही कई लोग मारे गए और कई अन्य लापता हुए। फिर भी खतरों को कम करने और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नेओक एक सेल प्रोटोकॉल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकेगी। यहां तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। नेओक के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग्स मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। रेजवी स्थित एंटोमोलॉजी डिविजन में अब से एक्सरे संबंधी एक नया इरेडिएटर कार्यरत। इससे स्टरवेल इंसेक्ट टेक्निक SIT के अंतर्गत फलों को नुकसान पहुंचाने वाले नर मच्छरों को स्टरलाइज किया जा सकेगा, इससे पहले कि इन्हें प्रकृति में छोड़ा जाए। ये एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, ताकि इस प्रकार के मच्छरों से निपटने के वास्ते इस तरीके को मजबूत किया जा सकता है और साथ में कीटनाशकों के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुंदेल इस टेक्नोलॉजी को इलाकाई शोकेस बनाने का इरादा रखते हैं। तिब्बत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे। भूकंप के कारण लोगों में दहशत फैल गई। कनारी आइलैंड्स के पास एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। नौका 27 दिनों से अटलांटिक सागर में। 44 लोगों को बचा लिया गया है और साथ में 5 शव बरामद हुए। नौका पश्चिमी अफ्रीका में गाम्बिया से रवाना हुई थी और उस पर 127 लोग सवार थे। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: You're listening to RM3 Radio.

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोमांस। कितने खुश हैं हम आपका साथ पाकर। हम जानते हैं कि इस समय बहुत सारे लोग इस समय काम से निकले हुए होंगे और एक दिन की थकान के बाद ये जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम गुड सूदिंग म्यूजिक जो दिल को बहला दे। So sit back and relax and enjoy. Mausam suhana hai. Don't press on the accelerator too much. Aram se. Enjoy the ride and enjoy life hamar sang.

यस दिल से मिले दिल ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मनोरंजन संजय के साथ. आई सपोज कि हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं आफ्टर वेरी हेक्टिक डे काम पर बहुत स्ट्रेस था बहुत काम था और इधर उधर करना पड़ा लेकिन शाम के वक्त 3:40 पर निकल कर भाग कर यहाँ पर आना और इन हसीन गानों के साए में आपके साथ कुछ समय कुछ पल गुजारना वाह आई जस्ट लव इट. और शुक्रिया हमें ये बताने के लिए दैट यू टू यू आर लविंग द सिलेक्शन और आपको भी ये पल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. वेरी नाइस लिसनिंग टू ऑल आवर लवली लिसनर्स.

0: राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज्ड फिल्म बंदिश का गाना। वाओ, क्या संगीत है, क्या गायकी है और कितने खूबसूरत सी यादें इस गाने के साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर मैसेजेस, ये बताने के लिए कि आपको सिलेक्शन कितना अच्छा लग रहा है।
1: You're listening to RM3 Radio Mana।

यकीनन जिस दिन हम इन सभी गानों को भूल जाएंगे वो हमारे हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इसलिए सबसे खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता संजोकर हम आए हैं, हम लाए हैं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खुशबूदार गुलदस्ते को अपनाने के लिए। Taking you once again down memory lane, लता जी और महेंद्र कपूर की मिली जुली आवाजों में।

0: याद रहे कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5250-6200. आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसे गुजरा. इट वॉज फाइन, स्ट्रेसफुल, या तो आराम से गुजरा. और बेशक हमारा जो सिलेक्शन है आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप हमें बता सकते हैं. आज विजया ने किया, आज माधुरी जी ने किया. Wishing you all a very nice listening on Radio Manoranjan. Dil se mere dil, Sanjay ke saath.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

पुराने गीतों का जादू हाय हाय हाय चले चले लेट मी टेल यू दैट ऑन दिस 3rd ऑफ सितंबर आज इट्स अ बर्थ डेट ऑफ इट्स एनिवर्सरी ऑफ प्यारे लाल जी आप तो जानते होंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी में जो जुओ था म्यूजिक डायरेक्टर का उस जुओ में से आज प्यारे लाल जी की जन्मतिथि है Born in 1940. Aaj hi it's a birth date of Shakti Kapoor. Ah, Lolita. Haan, Shakti Kapoor. Aur aaj hi it is the birthday of Vivek Oberoi ji.

हम ये नहीं जानते कि आप हमसे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन हमारे लिए ये स्टूडियो रेडियो मनोरंजन का जो स्टूडियो है शाम के 4 बजे से अभी तक हमारे लिए कोई जन्नत से कम नहीं। और यहां पर बसी हैं माता सरस्वती के स्वर, माता सरस्वती के स्वर, लय ताल, क्योंकि इसी के जरिए, इन्हीं गानों के जरिए, इन्हीं स्वरों के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खुशी, हम आप तक पहुंचाते हैं सुकून।

अब सब ऊपर वाले के हाथों में है। बस आपको याद दिला देने कि 5 बजे के बाद हम पेश करेंगे प्रोग्राम राम रसधारा, उसमें भी आप जरूर भाग लें। और फिर शनिवार की शाम 4 बजे हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। स्टे ट्यून ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इसमें शाम के 5 बज रहे हैं।
2: राम रसधारा, रसधारा
1: ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोता भाई बहनों को जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों का हार्दिक अभिवादन है आज के हमारे राम रसधारा सत्संग में। आज स्टूडियो में 3 बहनें उपस्थित हैं, बालाजी,

0: शिवानी जी और सुनीता जी तीनों बहनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।
0: सत्संग का श्री गणेश करते हैं, श्री राम स्तुति, श्री हनुमान स्तुति और इसके पश्चात हम सुनेंगे रामायण संदेश। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: जय सियाराम देवी और सज्जनों, स्टूडियो में उपस्थित बहनों से के साथ अब की बार हम सुनते हैं सुमिरनी। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: जी हाँ, राम रसधारा भाई संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। जय सिया राम देवी और सज्जनों, पिछले शुक्रवार को श्रवण मास की पूर्णिमा के साथ श्रवण मास की समाप्ति हो गई और हम भाद्रपद मास में प्रवेश कर चुके हैं। श्रवण मास में अगर हमने हर अर्थात शिव जी की ज्यादा तौर आराधना की तो इस भाद्रपद मास की शुरुआत में हरी उपासना में ज्यादा ध्यान देते हैं। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर मनाया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में वेद व्यास जी ने अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 के दरमिया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के उद्देश्य के बारे में हमें सुनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वेद व्यास जी सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दोहराया है अवधी भाषा में, और इसी को सुनते हैं तीन बहनों के संग स्टूडियो में। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

राम रसधारा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। हरि जी क्यों अवतरित होते हैं, उनके अवतार लेने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? गोस्वामी जी ने मानस में प्रभु के अवतरण के अनेक कारण बताए हैं। इसका उल्लेख हम मानस के बालकांड के दोहे 121 में देखते हैं। हरि जी क्यों अवतरित होते हैं? सज्जनों की रक्षा हेतु, गौ ब्राह्मणों की रक्षा हेतु, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्मों को पुनः स्थापित करने के लिए, खुद अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने भक्तों के वचनों का को रखने के लिए। आपको याद होगा कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था और नारद मुनि के श्राप को हरि ने स्वीकार किया था और इसीलिए उन्होंने नर रूप धारण करके राम अवतार लिया था। हरि क्यों अवतरित होते हैं? एक और कारण, भगवद गीता के जरिए उपदेश देने के लिए। हरि जी क्यों अवतार लेते हैं? श्री राम जी के जरिए एक रोल मॉडल, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। इतने कारण क्यों हरि अवतरित होते हैं।

0: रसधारा
1: जी हाँ, राम रसधारा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हर गुरुवार की शाम 5 से लेकर 6 बजे तक। श्रोताओं, पूरे श्रावण मास के दौरान हमने हर की आराधना की और अब इस भाद्रपद मास में शुरुआत हरि की पूजा के साथ और इसके पश्चात गणेश उत्सव। सत्ययुग में हरि ने चार अवतार लिए, मत्स्य, कुर्मा, वराह और नरसिंह। त्रेतायुग में हरि ने तीन अवतार लिए, वामन, परशुराम और श्रीराम। और द्वापर में कृष्ण और बुद्ध। लेकिन सनातनियों के लिए विशेष तौर पर श्रीराम और श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों रूपों में वे बालक के रूप में हमारे सामने आए, उन्होंने जन्म लिया, वे प्रकट हुए, बालक के रूप में हमारे सामने आए, फिर जवान अवस्था में हमारे सामने आए, फिर बड़े होकर उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया। इसलिए हम सबों के लिए श्री राम और श्री कृष्ण हमेशा आदरणीय रहेंगे, हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, हमारे इष्ट देव बने रहेंगे। और कल बड़ी धूमधाम के साथ हम सब मिलकर कृष्ण के रूप में हरि की आरती उतारेंगे।

0: जय सियाराम, जय जगदीश। सो एक बार फिर हमारे तमाम सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। राम रसधारा ये कार्यक्रम कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। चलते चलते आपको संकेत करते हैं कि प्रोग्राम के बाद आप किरण जानकी जी की प्रस्तुति में सुनेंगे हमारी धरोहर, उसके पश्चात भोजपुरी गान और उसके पश्चात समाचार। अभी समाप्ति मंत्र और शांतिपाद बहनों के संग। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में अगले गुरुवार की शाम 5 बजे। तब तक जय सियाराम, जय जय हनुमान,
1: जय सियाराम। ओम सर्वेषां स्वस्ति।

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा. दुनिया भर में काल 2 सितंबर के विश्व नारियल दिवस मनावल गल. नारियल के उपयोग शुभ काम से लेके सेहतमंद बने रहे खातिर काम काजी है. आज दुनिया भर में वर्ल्ड कोकोनट डे मनावे के कितने उद्देश्य बा. ये खास दिन नारियल के कृषि और उत्पादकता के बढ़ावा देवे खातिर मनावल जाला. तो आवा ई मौका पर जानी जा नारियल से बनल ऐसन कौन कौन प्रोड्यूस बा, कौन कौन पैदावार बा जेकर से हमनी के लाभ होवेला. एक तो नारियल एगो क्विक ड्रिंक है, मतलब कि चलते फिरते रास्ता में सकबा एगो नारियल खरीद के पी ले हुए और इस सेहत खातिर बहुत ही फायदेमंद है. और साथ ही साथ आपके मूड के ई झट से अच्छा कर देवेला. अगर आपके सुफमों के बीमारी रही तब बोलल जला कि सबसे आगे आपके चाहे नारियल पिए के. अगर आपके लाजोनिस होत हुई तब भी बोलल जला कि रोज कम से कम 2 गो नारियल पिया और ई जो बीमारी बा लाजोनिस उ चल जाए. अब नारियल ऐसन फल है जेकर लगभग हर रूप में उपयोग होवेला. ई स्वास्थ्यवर्धक होवे के संगे संगे हमने के जो भारतीय संस्कृति बा ओकर में बहुत हद तक इस्तेमाल करल जाला. यही वजह से नारियल के एकदम पवित्र मानल जाला. विभिन्न धार्मिक कार्य में देखबा कि नारियल सबसे ज़रूरी है. ऊ चाहे कोविल रही, चाहे मंदिर रही, चाहे शिवाला रही, नारियल सबसे प्रमुख फल मानल जाला. इंटरनेशनल कोकोनट डे की स्थापना साल 1969 में एशिया प्रशांत क्षेत्र खातिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग के तत्वावधान में होल रहल. और उस समय एके एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय APCC के रूप में जानल जात रहल. और एकर मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और आज इस संगठन में 20 को देश शामिल बा. और वर्ल्ड कोकोनट डे मनावे के मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नारियल के महत्व, मतलब कि जोन जोन फायदा हुआ था एकर से ओकर बारे में जनता के जनावे के है. एकर अलावा एकर खेती और नारियल उद्योग के बढ़ावा देवे पर भी बहुत जोर देवल जाला. खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 2019 में जारी करल गल आंकड़ा के अनुसार भारत विश्व के तीसरा शीर्ष नारियल उत्पादक देश है. एकर पहला नंबर पर बा इंडोनेशिया और फिलीपींस. हर बरिस कोकोनट डे पर नारियल के बढ़ावा देवे पर कितने गतिविधि चलेला और साथ ही साथ नारियल के जितना विशेषता बा उस सब पर ध्यान देवल जाला. कार्यक्रम के ध्यान से सुनना. बहुत धन्यवाद. नमस्ते.

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया जिसका उद्देश्य आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को अधिक सुलभ पारदर्शी और उपयोगी बनाना है। पोर्टलिस में लॉन्चिंग समारोह के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गुणवत्तापूर्व आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया और स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस में स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता बढ़ाने की घोषणा की। मॉरिशस में पहली बार अवकाफ मॉरिशस फाउंडेशन की पहल पर 3 से 5 सितंबर तक पोर्ट लुइस के लिलाबुडेने होटल में अंतर्राष्ट्रीय वक्फ सम्मेलन आयोजित। उद्घाटन समारोह में वक्फ के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा। M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर EIA रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते जनता से परामर्श की पहली बैठक। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना। कार्य अगले साल शुरू होने की उम्मीद। और विदेश में इंडोनेशिया में लगी भीषण भयंकर आग के कारण लाखों लोग जहरीले धुएं की चपेट में आ गए जिससे कि हजारों इंडोनेशियाई लोगों को सांस के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नमस्कार, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। बैंक ऑफ मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया जो एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आधिकारिक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को अधिक सुलभ पारदर्शी और आसानी से उपयोग करने योग्य बनाना है। इसका शुभारंभ आज पोर्टलिस स्थित बैंक ऑफ मॉरिशस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में हुआ। प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के स्तर पर स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता में सुधार की भी घोषणा की।
2: गुड इकोनॉमिक पॉलिसी बिगिंस विद गुड स्टैटिस्टिक्स which allow us to measure the economic realities accurately. When data is compiled according to internationally recognized standards, it allows public institutions to speak with clarity. It allows markets to form expectations with confidence and citizens to assess progress on the basis of facts rather than perceptions. Investing in strong data systems and analytical capacity is therefore central to our efforts to build

0: resilience to guide investments and develop targeted and effective policies. Statistics Mauritius will shortly undertake a comprehensive revision and updating of the national account system. As from September of this year, it will adopt the latest international statistical framework, the United Nations System of National Accounts, in a phased manner over a three-year period. Mauritius, again, will be the first country in Africa to adopt the NSA 2025. At the same time, as per practice, following a fully-fledged census of economic activities, which is carried out every 5 years, Statistics Mauritius will be rebasing the national accounts using data from the census.
1: और सुर्खियों, हम इसका उल्लेख कर रहे थे, मॉरिशस में पहली बार के लिए इस तरह का आयोजन। असल में अवकफ मॉरिशस फाउंडेशन के पहल पर 3 से 5 सितंबर तक लोला बुडने होटल में पोर्ट लुइस में इंटरनेशनल वकफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान आज सुबह वक्ताओं ने इसके बुनियादी पहलुओं पर बात की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किए जाने की घोषणा की है, जो विमानन पहुंच की नीति संभालेगी। उन्होंने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के उच्चाधिकारियों के साथ लगी एक बैठक के बाद ये बात कही। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे सर्वप्रथम तो देश के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर जनता के साथ होने वाली परामर्श बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक हुई। ये बैठक EIA यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई। उद्देश्य पर्यावरण पर निर्माण कार्यों के संभावित प्रभावों का आकलन करना। M4 मोटरवे का निर्माण शुरू करने का काम पहले अगस्त महीने में शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये अगले साल शुरू होगा। मंत्री अजय गणेश के अनुसार ये बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय और मॉरिशन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।
2: ये सभी देश के दक्षिण पूर्वी इलाके के अलग अलग गांवों के निवासी हैं। सभी की एक ही इच्छा है, बिना किसी रुकावट के सड़कों पर गाड़ी चला पाना। इसी दिशा में वे M4 मोटरवे परियोजना के पहले सलाह मशवरे सत्र में भाग लेने पहुंचे। 50 किलोमीटर का रास्ता जो फोबक को पुलाव जे के साथ जोड़ेगा। बाशिंदों की यही इच्छा है कि इसके निर्माण में पर्यावरण का सम्मान हो।
3: Quand nous avons une option qui est là, nous ne pouvons pas mettre un coup. Oui, nous faisons tout le monde, nous avons une faille ouverte. C'est pas une coup.
2: इस सड़क के निर्माण के लिए गांव वासियों की दिनचर्या को ध्यान में रखा जाना होगा, इलाके के आर्थिक विकास को भी।
4: Est-ce qu'il y a une autre possibilité ouvrir un chemin en Cointier et Croyant qui à la fois du coup est une fluidité de trafic dans Amsterdam.
5: Je comprends qu'ils se tiennent oui peut-être obstacle pour caminer. Nous avons envie de trouver une solution. Je veux dire, évite encore un incident fatal.
6: Je veux prendre des mois avec vous si tu veux mettre un jogging tracks. Nous savons le chemin là. Pour qu'il nous bande du monde, pour que tout le monde, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, capable de faire un petit peu de jogging.
2: एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट की तैयारी के लिए इन सत्रों के परिणामों पर गौर किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए पर्यावरण पर प्रभावों पर ध्यान केंद्रित होगा, भले ही इसके लिए EIA पर छूट है।
7: Nous avons un document qui peut va-et-vient entre le Maurice, la banque Exim de l'Aisne.
2: मंत्री अजय गणेश बताते हैं, मॉरिशन सरकार भारत के बैंक और भारतीय सरकार के बीच दस्तावेजों पर काम हो रहा है, सुधारों पर भी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंतजार है। EIA के साथ साथ ये भी सुपुर्द की जाएगी। 10.8 बिलियन रुपए लागत के गत महीने शुरू होने वाले कार्य अब जनवरी 2027 में आरंभ होंगे।
1: और सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक

0: नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किए जाने की घोषणा की है जो विमानन पहुंच की नीति संभालेगी। उन्होंने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मार्शल्स के उच्चाधिकारियों के साथ लगी एक बैठक के दौरान ये बात कही। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे सर्वप्रथम तो देश के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। मीकान पुनापा नायकन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड एयर मार्शल्स के अधिकारियों और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चली इस कार्य बैठक में हवाई संपर्क का मुद्दा केंद्र में रहा। प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रणाली पर फिर से गौर करने पर जोर दिया।
2: Mais moi, les open up un peu plus. Et c'est pourquoi nous faisons ça réunion aujourd'hui. Là, nous discutons assez longtemps l'option qui est non. Là, nous décidons que nous pouvons bien pas capable et access policy. Chaque fois, nous avons une route venir, les larges étaient mauvaises, les larges discutaient. Ça veut dire qu'on peut discuter d'un narrow base. Nous avons un système. C'est pourquoi nous pouvons faire un National Aviation Council qui peut être 10 Air Access Policy. Et là, il est redevable envers le Premier ministre. Là, nous ne vous mettons pas 10 mandimoune et mouches, mais aussi des professionnels qui connaissent l'aviation et Air Access Policy.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल एविएशन काउंसिल के गठन के साथ एतिहाद एयरवेज के साथ भी चर्चा की जाएगी, जिसने मॉरिशस के लिए उड़ान भरने की रुचि दिखाई है।
2: Depuis longtemps, j'ai intéressé Vin Maurice, Etihad. Donc, mais pas juste Etihad. Voulait faire un projet complet. Ça veut dire pas juste avion, mais les autres bénéfices que Maurice a gagné aux autres. Donc là, nous créons ça National Aviation Council là immédiatement et nous pouvons vite. C'est mon désir, je ne m'en pour faire la demande. Je vais faire la demande depuis bien, bien longtemps, je vais faire la demande. Hein. Donc là, nous pouvons commencer la discussion ensuite pour que Etihad soit capable de Maurice. Mais nous devons discuter pour éviter que même pour faire.
1: National Aviation Council, mais Vimanan Kshetra ke jane mane anubhavi peshevar shamil honge, desh ke hawaii kshetra ko adhik khula banane ka uddeshya, Mauritius ko dunya ke baki hisson se बेहतर तरीके से जोड़ना है।
0: और इससे पूर्व हम कह रहे थे कि मॉरिशस में पहली बार के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। अवकफ मॉरिशस फाउंडेशन की पहल पर 3-5 सितंबर तक लीला बुडने होटल में पोर्ट लुइस में इंटरनेशनल वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान आज सुबह वक्ताओं ने इसके बुनियादी पहलुओं पर बात की। सुमेरा अकबरल की ये रिपोर्ट पेश है।
3: इस पहले बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस में वक्फ के उसूलों पर रोशनी डाली गई। वक्फ इस्लामी सॉलिडारिटी का एक जरिया है जिसका आगाज 1400 से ज्यादा साल पहले किया गया था। डॉक्टर सलमा सैराली बताती हैं, वक्फ सदकाई जारिया है। मिसाल के तौर पर जायदाद का दान किया जाता है जिससे मिलने वाली आमदनी का इस्तेमाल समाजी प्रोग्रामों के लिए किया जाता है। मॉरिशस में 1941 का वक्फ एक्ट दुनिया के सबसे पुराने वक्फ कानूनों में शामिल है। बुनियादी उसूलों की हिफाजत करते हुए नए बदलाव लाए जा रहे हैं। डॉक्टर नजमल हुसैन रसूल बताते हैं, सरकार जो सुधार लाई है वो इस्लामी कानून पर पूरी तरह उतरते हैं। मॉरिशस में वक्फ के अच्छे संचालन के लिए ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब, सिंगापुर, यूके और दूसरे मुल्कों में वक्फ का अच्छा क्याम है। मॉरिशस में 500 से जायद वक्फ के बेहतर संचालन के लिए ये देश मॉरिशस के साथ अपनी महारत बांटने के लिए तैयार है।
4: From the experience of Mauritius.
3: दक्षिण अफ्रीका से जैनुल आबदीन काजी बताते हैं, मुझे लगता है कि हम मॉरिशस के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखेंगे। मॉरिशस कानूनी तौर पर वक्फ को अपनाने वाले पहले मुल्कों में शुमार है। अब मॉरिशस वक्फ की तरक्की में संलग्न हो रहा है, इस सफर से सीखेंगे।
4: In a new modern direction.
5: Inshallah, we had a very positive discussion.
3: So,

0: सऊदी अरब से यहया अलीम उर रहमान बताते हैं, हमारी अच्छी बातचीत हुई। हमारी संस्था का मकसद इस्लामिक फाइनेंस उद्योग को विकसित करना है। हम बहुत खुश हैं कि हम वक्फ कानून में सुधार लाने के सिलसिले में मुर्शिद सरकार की मदद करेंगी। मुर्शिद में वक्फ के कानूनी ढांचे के तहत देश को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की हैसियत देने की भी कोशिश है।
1: Le gros travail, c'est précisément pour ramener la loi de Wakaf de 1941 dans l'ère moderne.
0: मंत्री शकील मोहम्मद बताते हैं, सबसे बड़ा काम 1941 के वक्फ एक्ट को नए जमाने में ढालना है। वित्तीय सेवा केंद्र के तौर पर मुर्शिद की महारत से हम वक्फ का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कायम कर सकते हैं।
1: Pour précisément les, la gestion des Wakaf internationalement.
0: मंत्री रिजाउद्दीन कहते हैं, जिस तरह ग्लोबल बिजनेस जैसा ढांचा है, उसी तरह ग्लोबल वक्फ होना चाहिए। इस तरह हम वैश्विक सतह पर फंड जमा करके मॉरिशस और दूसरे मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पहल मॉरिशस में इस सामाजिक प्रोग्राम के फरोग के मकसद से भी ली गई है।
2: एक ही वीज़ा से सादक के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। सादक टूरिज्म यूनिवीज़ा का ये सिद्धांत है। ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक होगा। इस साल जर्बन दक्षिण अफ्रीका में लगी इस सादक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर बातचीत चली। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश रामफल भी मौजूद। अभी के लिए 5 देश इस पायलट परियोजना में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक शामिल है। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवास के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के संबंध में मॉरिशन नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता। नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उठी भयानक बाढ़ में कुछ ही मिनट के अंतराल में कई लोग मारे गए और कई अभी भी लापता है। फिर भी खतरों को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नियोक एक सेल प्रोटोकॉल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकती है। यहां तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। नियोग के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग्स मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। बाढ़, तूफान, पानी का उमड़ना, जलवायु खतरों के चलते एम्स्टर्डम परियोजना को लॉन्च किया गया। एम्स्टर्डम परियोजना के कोऑर्डिनेटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेंस के डॉक्टर जय दुर्गा ने कहा,
3: सैटेलाइट
2: जानकारियों के आधार पर हम इनमें से कुछ डाटा का पता लगा रहे हैं। जलवायु केंद्रों की ओर से ये डाटा प्रोसेस किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लंबी अवधि के लिए पूर्व सूचना की जा चुकी है। जलवायु खतरों को कैप्चर किया जा चुका है, अब हम इनका मूल्यांकन करेंगे। वर्तमान एवं मूल ढांचों से संबंधित है। इस औजार की बदौलत महत्वपूर्ण मूल ढांचों की कमजोरी के बारे में जानने का और मार्गों तथा जल नेटवर्क और बिजली लाइनों का पता भी लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, इस परियोजना के तहत ये देखा जा रहा है कि विगत में यानी पिछले 30-40 वर्षों में किस तरह देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ, मॉरिशस में किस तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ा, मसलन मिट्टी का कटना जैसे कि माकोंदे सड़क के पास आदि। इन जानकारियों की बदौलत अधिकारीगण निर्धारित कर पाएंगे कि प्राथमिक तरीके से किन ढांचों को सुरक्षित रखना है और किस तरह बेहतर रूप से निवेश दिशा देनी है। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इलाकों को लेकर चिंतन कर रही है। ये भी देख रही है कि किस तरह के अनुकूल अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज हैं। ये रोडमैप है जिसके अंतर्गत सरकार को प्रस्तावित कर रही है कि कहां पर सही तरीके से निवेश करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित परियोजना एम्स्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेंस और नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर की साझेदारी से चलाई जा रही है। बरतानी उच्चायोग का भी
3: समर्थन प्राप्त है। अनुमान है कि एम्स्टर 2027 के मध्य

0: तक पूरी तरह से कार्यरत हो सकती है।
1: चार धाम यात्रा के लिए 44 लोकल भारत के लिए रवाना हुए, ये मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की एक पहल है। रिपोर्ट करुणा लालू के साथ।
2: नेपाल और चीन की सीमा पर 26 अगस्त को आए भीषण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 4700 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल में सैन्यकर्मी, पुलिस और अन्य लोग खोज और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। अपने घर खो चुके कई लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरे हुए हैं। अधिकारियों के सामने उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए आश्रयों में स्वच्छता बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है। पहली सितंबर 2026 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने कुल 6,186 पुष्ट मामलों की सूचना दी, जिसमें 3,007 संबंधित मौतें शामिल हैं। कुल 830 मरीज आइसोलेशन में अस्पताल में भर्ती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि DRC में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करना है तो संक्रमण की प्रत्येक श्रृंखला की पहचान करनी।
1: तो इस तरह अभी आप विदेशी समाचारों में कुछ खबरें सुन रहे थे। पहली सितंबर 2026 तक कोंगो में इबोला के 6,186 पुष्ट मामले और 3,700 मौतें दर्ज हुई हैं। हालिया खबरों के अनुसार तिब्बत में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे हैं। भूकंप के कारण लोगों में दहशत है। कनारी आइलैंड्स के पास एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये नौका 27 दिनों से अटलांटिक सागर में थी। 44 लोगों को बचा लिया गया है और साथ में 5 शव बरामद हुए। नौका पश्चिमी अफ्रीका में गाम्बिया से रवाना हुई थी और उस पर 127 लोग सवार थे। भारत की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित 1,000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और कहा कि उनकी सरकार 102 गांवों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता भी वितरित की। बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए श्री आदित्यनाथ ने कहा कि वे आश्वस्त करने आए हैं कि आपदा की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आवश्यकताओं के अनुसार हर संभव मदद उन तक पहुंचे। भारत और बेल्जियम ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच सैनिक अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बर्ट डी वेवव के साथ वार्ता के बाद कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत बेल्जियम संबंधों का प्रमुख स्तंभ है और दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
3: मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
4: हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:16 पर, शाम को सूर्यास्त 6:01 पर होगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ की ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी शिव ऑफ कोविला को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Avenue de Belles Sources, Pamplemousses May. Avenue de Belles Sources, Pamplemousses May. 83 साल के 83 years old की श्रीमती राजुम्बा चिंगादू. श्रीमती राजुम्बा चिंगादू पैदाशी नाम वेंगारू, जो इंद्रानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे श्री राजन चिंगादू के घर एवेन्यू डी बेल्स सोर्स पंपलेमूसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. मोसेल मॉप्रिडम रिवे डिजांगी में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्री शानमुगम ब्रिजित, जो नादन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री सबदेवन ब्रिजित के घर मोसर मॉप्रिडम रिवे डिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. बिस्वालेन प्लेन मायो में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेन मायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. रुथ रॉयल 8वीं मिल ट्रियोली में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री महेंद्र भोईरू, जो माहिन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर रुथ रॉयल 8वीं मिल ट्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनिस ट्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट नून. शुक मेडविन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है.

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 5 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक सैंखवामे और आसपास के इलाकों में जैसे कि रेजिडेंस ब्रिकेटरी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और शनिवार 5 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक फॉरेस्ट साइड में और आसपास के इलाकों में मौसलमा उसेनी और रुए और आसपास के इलाकों में भी और शनिवार 5 सितंबर को सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मिडलैंड्स और कोरियोलिस रोड में भी और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शुक्रवार 4 सितंबर को शाम के 6:30 बजे देपिने के श्री गोपाल सीएसएस गोविंदा धाम द्वारा देपिने के दिंग कॉम्प्लेक्स हॉल में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 4 सितंबर ही को रात्रि के 8 बजे से मिडलैंड्स शिवालय श्री जगदेश्वरनाथ द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 4 सितंबर को और शनिवार 5 सितंबर को मॉरिशस सनातन धर्मा टेंपल्स फेडरेशन बेलेरिविया सेश पुष्पालोचनिया मंदिर और आर्ट्स इंस्पायर के सहयोग से सुबह 9 बजे गणेश चतुर्थी के संदर्भ में माटी से मूर्ति पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:33 हो गई है।

हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं, बस आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, नई सोच कार्यक्रम हर थर्सडे को मैं आ ही जाता हूँ। नॉर्मली एवरी डे नई सोच कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है, उसकी पेशकश की जाती है, लेकिन मैं हर गुरुवार को आ जाता हूँ आप लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कान लाने के लिए। एक नई सोच, एक नया विचार, एक नई उमंग के साथ हम भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ हो सकती है। जो बिल्कुल ऐसे टाइम पर हम कुछ नई बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 7 बजे तक यहाँ पर नई सोच कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। फिर उसके बाद विल बी हैविंग दिलों की आवाज़ कार्यक्रम 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का।

जो उस वक्त शाम के 6:43 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है और हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़ गए हैं, उसको हम कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। जो दोस्तों आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ना, ये ही गलत बात है। अगर दूसरों पर ज़्यादा उम्मीद रखना शुरू करेंगे, हो सकता है कि जो आप दूसरों पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा और इससे आपका जो दिल है वो टूटने लगेगा और उस इंसान के प्रति आपका जो ग्रज है वो और ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मेरे साथ ये किया। इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए था वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरों पर ज़्यादा उम्मीद रखने के बजाय खुद पर अगर आप उम्मीद रखेंगे तब बात अलग होगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आप खुद पर उम्मीद रखिए। अगर आप खुद पर उम्मीद नहीं रखेंगे, खुद के खिलाफ हो जाएंगे, तब आपका जो काम है ना वो अधूरा ही रह जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों से सवाल करते हैं और जवाब की उम्मीद रखते हैं। जवाब की उम्मीद रखते रखते हम जवाब पाने के लिए कोई लाइक वाला काम नहीं करते हैं, तब जाकर के प्रॉब्लम होता है। अरे भाई कोशिश करते रहिए, खुद ब खुद आप उस सवाल के जवाब हो जाएंगे। इसके बारे में सोचिए जी।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक और दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त रात के 7:03 हो गए हैं 402-80-70 पर 402-80-70 पर आप हमें फोन करके बताइए कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे।

क्या बात है, इसे गीत सुनने के बाद बात करने का भी मन नहीं होता है, बस एंजॉय करते रहना चाहिए। आप जहां पर भी हो मेरे दोस्त, आप लोग हमारे साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ रात के 7:24 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। यू मे ऑल्सो लॉग ऑन बाय www.mbcradio.tv, जहाँ बिल्कुल। और यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस हमें मिले हैं, मैं क्या कहूँ, फ़ोन भी बज रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लग गए हैं। और अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे किसके नाम। वी डू हैव श्रद्धा। श्रद्धा ने कहा कि अगला गीत उसके मंगेतर के लिए हो जाए जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वी ऑल्सो हैव मनीता। प्रणाम अभी, प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप ठीक हैं। थैंक यू सो मच। मैं भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। सो मनीता के लिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे उनकी प्यारी माँ के लिए। वी ऑल्सो हैव सुमंती। बहना है आरती, सचिता, बबीता। रेखा के लिए भी एक गाना हो जाए प्लीज़। धन्यवाद आपके प्यार प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। पता है इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे दागन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लविशा, सभी अपाडू फैमिली के लिए। लवली सिलेक्शन। अभी एक्चुअली ये सिलेक्शन मेरा नहीं है, आप लोगों का ही है। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250620। चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे वंदना और नवीन के नाम।

जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के दिल को छुराने के लिए हम तो यहाँ पर एकदम रेडी हैं और वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर 402 8070 पर अगर फोन नहीं कर पाएंगे तो एक मैसेजेस भी भेज दे ऑन 5250-6200।

जी दोस्तों, अभी के लिए आपके दिल को चुराने के लिए हम तो यहाँ पर आ ही गए हैं। इतने सारे सुंदर सुंदर मैसेजेस, हाय हाय, मैं सड़के जवा गुड़ खाके। इस वक्त रात के 7:31 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, आप लोगों की मन को रंजित करने के लिए मनोरंजन तो है यहाँ पर। चलिए, ये गाना जो हम डेडिकेट करने जाएंगे वो स्पेशली भाई आबू के नाम है, जो वाकवा से हमें याद कर रही हैं। उन्होंने कहा, अच्छा नाम लिखना शुरू करोगे अभी? मैंने कहा, अरे नहीं यार, नाम तो मुझे पता है, आबू, आतिफ, असलम, अफेज, आया, जयान और उनके जिगरी दोस्त आपी और उनके लवली वाइफ के नाम। देखा, पता चल गया। तो चलिए, ये गाना स्पेशली आपके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा कर ले कर ले। And right now we shall bring you down to the memory lane of the golden era. भरी दुनिया में आखिर मूवी का नाम है दो बदन। और अभी के लिए मेरा जो बदन है वो यहाँ पर गर्माहट होने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ना एसी बंद है।

भाईया हंस गोविंदा है। सो अगला गीत स्पेशली उनके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे उनके सभी मराठा बॉयज के नाम जो इस वक्त जोरों शोरों से तैयारी कर रही है झांकरी का। सो दिस इज फॉर यू माय ब्रो हंसा।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

जी हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए हैं सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज कार्यक्रम। नमस्कार राधा, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे फोन कॉल्स मिल गए हैं, मैं क्या कहूँ। जो अगला गीत है स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी डू हैव स्वेनल, उन्होंने जालिम मूवी का एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। भाई श्रवण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या, तिलक फैमिली जो ब्रह्मस्थान के हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे गिरीश आलुल के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो भाई अभी, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते अभी, आप कैसे हैं? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। प्लीज हमेशा की तरह स्वीट गाना मेरे लिए और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी का।

जी हाँ दोस्तों, हमें भी आपसे प्यार हो गए हैं, इसीलिए हम आ ही जाते हैं। हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचते हैं, आपके दिलों तक पहुँचते हैं, इसीलिए दिलों की आवाज़ के जो कार्यक्रम हैं हम लेकर के आ जाते हैं हर गुरुवार रात के 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का। जो बिल्कुल इस वक्त रात के 8:26 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे प्रिया के नाम, और वी ऑल्सो हैव उनके लवली पति हैं जिनका नाम है किशन, और संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम US। उन्होंने कहा नाइस सॉन्ग सिलेक्शन अभी, थैंक यू सो मच भाई संजीव। ये गाना खासकर हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, चलिए इस गाने को हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। 90s खासकर जो गाने हैं, एक से बढ़कर एक जो गाने की फरमाइश जब आप करते हैं, दिल बल्ले बल्ले शुरू हो जाता है। ओसम सिलेक्शन अभी, थैंक यू सो मच इसके लिए। एक बार फिर से गुड वाइब्स डारन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लवीशा और सभी अपाडू फैमिली जो खुशनुआ के हैं। तो चलिए ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

यादें सब लोगों को लेकर के जाते हैं एक अलग जिंदगी में, और ये गाना खासकर हम मिस्टर आशीष रामजतन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे, जो अपनी यादों को संजो करके ड्राइव कर रहे हैं एक हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन इस ठंडी हवाओं के साथ साथ वो गर्म कपड़े पहन करके, ना गर्म कपड़े यानी कि समर कपड़े पहन करके वो ड्राइव कर रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे पता नहीं है मिलेगा या नहीं।

चलिए ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे अजय या लोखन के नाम जिनका बर्थडे था। बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम लवली वाइफ नीता के नाम। साथ ही साथ दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, आहान और आयुषा। ये गाना खासकर उनके लवली सिस्टर संगीता और जितने सारे लोखन फैमिली हैं, अजय लोखन को बहुत बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और पप्पियाँ झप्पियाँ दे रही हैं जी।

जी दोस्तों, इस वक्त रात के 8:39 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गाना खासकर हम भाई विनय गोबिन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। वे हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं फ्रॉम कनाडा और उनके लवली वाइफ गौरी के नाम, साथ ही साथ दो बच्चे हैं, वे हव सानवी और यतीश। यतीश तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और बड़े मेजर साहब की तरफ करते हैं, तो खासकर ये गाना उनके नाम। Here we go।

दोस्तों, टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, एंड हम वादा करते हैं कि नेक्स्ट थर्सडे को भी फिर से आएंगे और एक से बढ़कर एक जो गीत है आप लोगों के नाम हम चलाएंगे। और जाते जाते ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे रेहाना के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वी ओल्सो ऑफ जालीला और जियाद। टिल देन, अभी की ओर से नमस्कार और आदाब, बाय बाय।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग, यू आर एम

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आप सबको एक नमस्ते और आप सबको एक बहुत बहुत स्वागत बा। आज की रात 3 सितंबर बिफे के रात्रि बा और रात के 9:06 होल बा। ये बखत आप जुड़ल हवा अपन मनपसंद चैनल के साथ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। और ये बखत आपके उ प्रोग्राम शुरू होवेला जेकर आपके बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेला। और ये प्रोग्राम चली अभी 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। आपके फरमाइश के बल पर ये प्रोग्राम के फिर से सरियावल जाए। और ये पहला गीत आप सब कोई के नाम राधन राम साहा के आवाज़ में एगो ऐसन गीत जो एगो ज़माना में बहुत तहलका मचेले रहा।

ये बखत रात के 9:11 होल बा और आप लोग के फरमाइश आई के शुरू हो गल बा। आप लोग के जोन गीत के मांग कर था वजह उमें से जोन अगला गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली। ये गीत सुने चाहत हवन पीतों से अमृता गणेश। आप ये गीत अपन पोती सोनिया परी, बेटा और बहू मीनाक्षी और विहान और अपन बेटी पूनम के नाम करत हवा, जे लोग हमेशा की तरह अभी बहुत प्यार से साथ देवत हवन जा। उधर गाँव गोप से हमने के सुनत हवन सुनीता जी, और सुनीता ई गीत अपन बहन के नाम करत हवन जे कोंगोमा के हवन, और उनकर बहन के नाम है विमाला। विमाला जी आपके नाम सुनीता जी के ओर से गाँव गोप से, और चमेली चमेली के ढेर शौकीन बा अभी जे हमने के सुना था वजह तो जितना कोई गीत खुशी रहे जा सुने के, खास तौर पर हंसले के नाम चमेली चमेली।

आज 3 सितंबर के जितना कोई के भी जन्मदिन बा आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना और खाली आज ही नहीं बल्कि सितंबर महीना से जितना कोई अपन जन्मदिन मनावे के शुरू कर ले हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई और फरमाई शालबा यौवन छट्टू के जन्मदिन खातिर यौवन के जन्मदिन दिमास के 6 तारीख के बा उनकर दादी सीला दादा सुरेन उनकर माँ सोनम उनकर भाई कबीर और फूफू दोनों फूफू शशि किरण और रुद्राक्ष हंसले और पूरा परिवार के ओर से और यौवन के सब दोस्त लोग के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत तरक्की जीवन में होते रही ऐसा हमने के शुभकामना बा और यौवन के बाद काल एगो जन्मदिन बा एगो दूसर खास जन्मदिन हमने के मशहूर गायिका पूर्णिमा फोकिरा जी के जन्मदिन काल मनावल जाता और पूर्णिमा जी आपके जन्मदिन के ढेरों शुभकामना आपके आवाज़ हमेशा सरस्वती आपके कंठ में वास करी आवाज़ आपके गूंजते रही और जन्मदिन के आपके बहुत बहुत शुभकामना आपके पूरा परिवार के ओर से और आप अपन पूरा परिवार के नाम अपन जन्मदिन के मौका पर अगला गीत करत हवा आपके गोशनों के आपके सब जिले लोग के नाम

आपके बेटी पूनम पिंकी प्रवीणी और आपके बहू कुष्मा के नाम, फिर पूजा शायन समी कनिष आयान परी, उधर आपके बहन लोग हवंजा शोभा मुनुन और माला, आपके बहन माला के जन्मदिन 9 तारीख के बा, तो उनकरा भी आप जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करत हवा। और साथ में पूरा प्यासान परिवार क्रिश और आश्विन के नाम अगला गीत पूर्णिमा जी के ओर से। और पूर्णिमा और यौवन के अलावा जेकर भी जन्मदिन मनावल जाए होला बा आवे होला दिन में, या आज आपके घर में पार्टी चलता दावत चलता खुशी के माहौल बंधल बा, तो चला बसंत सुपोल के आवाज़ में ये अगला गीत आप सब कोई के नाम।

कॉल से ले जाता और आप लोग की फरमाइश भी आवता। आज के रात बहुत जगह पर पानी बरसता का कहीं तरह, कहीं पर पानी कमती बा त कहूँ जस्ती बा, त इ वजह से जे अभी सड़क पर हुई बा ड्राइव करत हुई बा त बहुत सावधानी से गाड़ी चलैया, और जे इ बखत आप घरे हवा आराम करत हवा खाना पीना हो गल त हमने के साथ अभी देते रह 11 बजे तक हमने साथ रह जा। आज बिफे के दिन एगो राहत थोड़ा दिन है, कहे कि काल सुख चलाल और सुख के बाद अब आराम के दिन रही, और काल एगो ऐसन वैसन सुख के दिन नहीं है बल्कि काल जन्माष्टमी बा। आप में से ढेर कोई बहुत खुशी बहुत उत्साह के साथ भक्ति भाव के साथ जन्माष्टमी की तैयारी में लगल हवा जा, उधर ढेर कोई गणेश चतुर्थी के व्रत धारण कर ले हवा जा। आप लोग गणेश चतुर्थी मनावे खातिर गणेश पूजा खातिर अपन सामान तैयार करत हुई बजा, एक बगल मिट्टी तैयार करत हुई बजा, ताकि ऐसन गणेश मूर्ति बनी जेकर विसर्जन के बाद वो फिर से प्रकृति में मिल जाए। तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना, हमने आपके साथ देवत है जा रात भर अभी से 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद भी हमने के जो संगीतमय सिलसिला बा वो कहाँ कहाँ रुकेला, लेकिन भोजपुरी अभी से 11 बजे तक चला था। अगला गीत एगो फिर से ऐसा गीत जो इतिहास रच दिले बा मॉरिशस में, और ये गीत सुन के एगो गाँव के याद आवेला और उहल लाल माटी। आप इशारा समझ कर हुई बा, हमारी इशारा डुगारू की तरफ बा।

और अगला जन गीत अभी चले होला बा वह अयोध्या के राज अभिमन्यु हरपाल के आवाज में। ये गीत सुने के इच्छा रखत हवन कल्याणी जी, आप बहुत शरी से हवा और आप गीता राधा की सुन अंजू विशाम बड़की मुनोवा फूलो अनसुया और विकास राम के रावण के नाम अगला गीत करत हवा, खास तौर पर सत्यानंद सालिक के नाम अयोध्या के राज। तो वाशरी से कल्याणी जी आपके मांग पर चला हमने सबको ये गीत सुनब जा और आप बोल थवा कि ई बखत जितना कोई भी हमने के ई प्रोग्राम सुनत हवा जा ई गीत आप उस सब कोई के नाम करत हवा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

काल ई बखत हर मंदिर में कृष्ण के ललना चली गुन गावल जाए, कहे कि अभी से 24 घंटा से 2 घंटा ज़्यादा समय में कृष्णा के जन्म हुई होला बा। और कृष्ण जन्माष्टमी के आप सब कोई की बहुत बहुत शुभकामना शुभकामना देवत हवन फ्री ऑफ लक से अनीता जी। और आप RM3 और रेडियो मॉरिशस के जितना भी सुने होला हवन जा, आप सब कोई के नाम ये अगला गीत करत हवा। आप चाहत हवा कि अगला गीत कृष्णा पर ही एगो गाना रही। और जितना कोई भी कृष्ण भक्त हवा जा, कृष्ण के दीवाना नहीं है, के दीवानी नहीं है, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। हमने के ढेर ऐसा श्रोता लोग

फोन करत हवन जा और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभकामना प्रस्तुत करत हवन जा। तो एक बार फिर ये जन्माष्टमी के आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के जीवन में काल के जो जन्माष्टमी रही वो नवा उम्मीद आनी नवा आशीर्वाद के साथ आए और कृष श्रीदोई के आवाज़ में ये सुंदर गीत आप सब कोई के नाम, खास तौर पर फ्लिक ऑफ फ्लैक से अनिता जी के नाम।

अर्जुन अगला गीत चला था। ये गीत ज्ञान मोहिपतला के आवाज़ में बदरिया घिर घिर आए और ये गीत के फरमाइश हमेशा की तरह वाशरी से धनी जी करत हवन जिनकर यहाँ अभी कराके के ठंड करता।

10:26 होगल बा और अभी आप रतन हरि की आवाज़ में बीच सीमा में पुलिस रोके ये गीत सुनत रहला और ये गीत अभी सुनने के सबसे जस्ती हमने के ज़रूरत बा कहे कि हम के सड़क पर जो कानून बा जो नियम बा ओके और भी सख्ती से अमल में आना जाता और ऐसा में आपके चाहे बहुत ज़्यादा सावधानी बरते के सबसे पहले तो अपन गाड़ी में कोनो आपके नहीं चाहिए ऐसन औसन लापरवाही बरते के जेकर वजह से बिना भेद के आपके परी पुलिस के सामना करे के और वैसे भी हमने की सड़क आजकल बहुत ही खतरनाक हो गल बा सड़क तो उही बा लेकिन शायद गाड़ी चलावे के तरीका थोड़ा बिगड़ गल बा आदत नहीं अच्छा बा और ऐसन में सावधानी बहुत ज़रूरी बा आप सब कोई बहुत सावधानी के साथ ख़ास तौर पर ई बखत रात के जब गाड़ी चलावत हो वजह बारिश में ड्राइव करत हो वजह तो आपके चाहे भरपूर सावधानी बरते की अगला गीत भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज़ के एल्बम से लेवल गल बा और ये गीत जे आपके घर में ई बखत कोनो रंगारंग कार्यक्रम चलत हुई तो ख़ास तौर पर आप लोग के नाम और जे वैसे ही आप ये भोजपुरी गीत संगीत के आनंद उठावत हवा तो आप भी जे ई बखत खाली आराम खातिर लेटे लेटे हमने के सुनत हवा तो आपके भी ये काफ़ी मनोरंजन के एगो गीत रही चला संगीत सुनी जा हमने के भोजपुरी के ई नवा आयाम पर आने होला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज़ के बैक बैक।

अभी आप सुनत हवा राजकमल चिंतामणि के आवाज में ये गीत एगो पोपूरी हा, जहाँ पर छोटा छोटा गीत के मिला मिला के एगो गीत बनावा गल बा। और आज के नवा अंदाज के हिसाब से ऐसा ही गीत जस्ती मशहूर हुआ था। और अभी से हमने के सामने और लगभग 20 मिनट बा ये प्रोग्राम के चले चले में समाप्त हुए में आप सबको हमने के साथ देते रहा 11 बजे तक। काल के कृष्ण जन्माष्टमी के आप सबको के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना। हमने के मुलाकात फिर से हुई भोजपुरी तड़का में आवत बीफे के, और नहीं तो कल फजर के हमारी धरोहर में तो भेंट भी करब जा। आप सबको के शुभरात्रि, अपन ख्याल रखिया, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। आप सबका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में। आज जिन कलाकार से मिलाएंगे, मतलब कि उनकी आवाज सुनकर दिल को सुकून पहुंचता है, यानी कि आंखों में एक नमी सी आ जाती है, बस सुनने का मन करता है। कौन है वो? जानी मानी गायिका है हेमलता। बहुत प्यारे प्यारे गाने उन्होंने गाए हैं जो आज एक बार फिर आपको सुनाएंगे। साथ दीजिएगा।

की कोमल और पवित्र आवाज हेमलता, हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी आवाज में मधुरता, भक्ति और शुद्ध भाव की एक अनोखी चमक रही। 1970 और 1980 के दौरान उन्होंने अपनी मीठी और कोमल आवाज से दर्शकों और संगीत प्रेमियों के दिल जीत लिए। उनकी गायकी में एक साफ सुथरा, मासूम और भावपूर्ण अंदाज रहा जो सीधा दिल तक पहुंच जाता था।

हेमलता का जन्म एक संगीतमय परिवार में हुआ, इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की तरफ रहा। उन्होंने कठोर रियाज किया और क्लासिकल संगीत की मजबूत बुनियाद पर अपनी पहचान बनाई। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्होंने महान संगीतकार रविंद्र जैन के साथ काम किया। रविंद्र जैन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कई यादगार गाने दिए। चितचोर के गीत तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले और जवदीप जिले आना ने हेमलता को घर घर में मशहूर कर दिया। इन गानों में उनकी आवाज की मासूमियत और सुरों की पकड़ ने सबको प्रभावित किया। इस फिल्म का

संगीत आज भी लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। वैसे उन्होंने अखियों के झरोकों से और नदियां के पार जैसे फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। अखियों के झरोकों से का टाइटल सॉन्ग आज भी रोमांटिक और कोमल भावों का प्रतीक माना जाता है।

फिजिकल ट्रेनिंग की झलक साफ नजर आती रही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने गानों को इतना सरल और मधुर बनाया कि आम श्रोता भी तुरंत जुड़ जाएं। उनकी आवाज में कोमल कंठ था, ना बहुत तेज ना बहुत भारी, बल्कि एक संतुलित, शांत और सुकून देने वाली ध्वनि। भजन हो या रोमांटिक गीत, हर जगह उन्होंने अपने सुरों में भाव भर दिया। उनके भक्ति गीत भी बहुत ही लोकप्रिय रहे, जिसमें उनकी श्रद्धा और समर्पण महसूस होता है।

वैसे हेमलता का जीवन सादगी और समर्पण का प्रतीक रहा। फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक के बीच भी उन्होंने अपनी सरलता और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। उनका फोकस हमेशा संगीत और रियाज पर रहा। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई बिना किसी प्रचार या विवादों के। उनका करियर शायद कुछ अन्य गायिकाओं की तरह बहुत लंबा और लगातार सुपरहिट ना रहा हो, लेकिन जितने भी गीत उन्होंने दिए वे सब यादगार बन गए।

हेमलता ने हिंदी सिनेमा को एक पवित्र और कोमल संगीत की महक दी। उनके गीत आज भी शादियों में, महफिलों में और रेडियो पर भी सुनाई देते हैं। उनकी आवाज सुनते ही 70s और 80s का वो सुहाना दौर याद आ जाता है, जब गीतों में शब्द और सुर दोनों की अहमियत होती थी।

नए गायकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि सुरों में सच्चाई और दिल से निकली भावना हो तो गीत अमर हो ही जाता है। हेमलता हिंदी संगीत जगत की एक कोमल कली है जिनकी मीठी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

गायकी हमें याद दिलाती है कि संगीत मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक भाव है, एक जैसे कहते हैं ना इबादत है। हेमलता की आवाज आज भी

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: आपके खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC Radio.
2: NBC Radio, हर पल आपके साथ.
0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC Radio
2: हर पल आपके साथ. NBC Radio, वजह मुस्कुराने की.
3: NBC Radio, योर म्यूजिक कंपेनियन.
2: NBC Radio, वजह मुस्कुराने की.
3: NBC Radio, योर म्यूजिक कंपेनियन.
0: NBC Radio, 24 hours a day.